एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने को हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रथम सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6

0: विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 107 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। सुबह 6:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। समय रहेगा 6:15। 6:45 पर आप आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का। श्री रामचरित मानस गान बालकांड से संकलित एपिसोड 13, कलाकार गोविंद सिंह और संगीत होगा सतीश भाटिया का, आप सुन पाएंगे 7:20 से। 7:30 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार चूरू, इसमें चर्चा होगी ज्ञान ही शांति है। और इसके अलावा जानकारी विलुप्त होते पशु पक्षी संस्कृति के समक्ष बड़ी चुनौती। समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 8:00। 8:15 पर आप सुन पाएंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 का समय रहेगा छलकी का। 8:45 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे समाचार तरंग। 9:00 आप सुनिएगा आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। देशगान का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 9:10 से। 9:15 का समय रहेगा फिल्मी कव्वालियों के कार्यक्रम महफिल का। 9:30 पर आप सुन पाएंगे किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे दिन में 10:00। दिन में 11:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विवरण। 11:05 का समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, समय होगा दिन में 12:00। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, कलाकार होंगे उमेद सिंह सैनी और साथी, इनसे आप लोक भजन सुन पाएंगे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे दिन में 1:00। दिन में 1:05 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम घर आंगन का, इसमें चर्चा होगी धैर्य और समझदारी से निकलता है हर समस्या का हल। एक और जानकारी, बच्चों के साथ साझा करें अपना बचपन। और जानकारी होगी खुद पर भरोसा करें और अपनी सोच को लचीला रखें। मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दिन में 2:00। 2:15 पर आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। ईमेल आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेल बॉक्स, समय रहेगा दिन में 2:30।

दूसरी सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। इसमें चर्चा होगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एक और चर्चा, अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं युवा, सफलता नहीं सार्थकता जरूरी विषय पर भी जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रमों संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा शाम 5:55 पर। शाम 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार बुलेटिन। शाम 6:05 पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:10 पर। शाम 6:20 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार बुलेटिन। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:40 पर। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम खेती और गृहस्थी का। इसमें चर्चा होगी इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्य। एक और जानकारी, खेती किसानों में महिलाओं का योगदान। एक और जानकारी होगी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के तरीके। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, समय रहेगा रात्रि 8 बजे। रात 8:45 पर आप सुन पाएंगे समाचार संध्या न्यूज एट 9। रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज सुन पाएंगे रात 9:15 पर। रात 9:30 का समय रहेगा पब्लिक पार्क का। रात 10 बजे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे खेल जगत। 10:30 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुन रहे हैं।

ये प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र का है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह की 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

स्वभावो न उपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा सुतप्तम अपि पानीयम् पुनर्गच्छति शीतताम्। किसी भी व्यक्ति को आप चाहे कितने भी सलाह दे, उपदेश दे, किंतु उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता। ठीक उसी तरह जैसे ठंडे पानी को उबालने पर कुछ ही देर के लिए वो गर्म हो जाता है, लेकिन बाद में पुनः अपनी मूल अवस्था यानी ठंडा हो जाता है।

साथियों, हम किसी भी काम में अगर कहीं अटक जाते हैं और हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता तो हम दूसरे का सहयोग चाहते हैं, दूसरे से सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं। तो आप इसको अपनी कमजोरी मत समझिएगा, बिल्कुल आपकी विनम्रता, समझदारी और सीखने की चाहत का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं और उन्हें अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं। कोई भी व्यक्ति हर परिस्थिति में सर्वज्ञ नहीं होता। जब आप किसी विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो आपको एक नया नजरिया मिलता है और आपको काम की सफलता है वो सुनिश्चित हो जाती है, यानी एक नया दृष्टिकोण आपको मिल जाता है। केवल वे ही लोग सलाह मांगने से बचते हैं जिनके मन में अहंकार होता है और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और बेहतर समाधान खोजने की असली जो लीडरशिप की निशानी है वो अहंकार से मुक्ति है और सभी को साथ लेकर चलने का एक मुख्य भाव है। सलाह लेने से आप उन संभावित गलतियों और जोखिमों से भी बच सकते हैं जिनका सामना वह व्यक्ति पहले कर चुका होता है। गलतियों से हम बच सकते हैं अगर हम किसी से सलाह लें। सलाह लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता को खो रहे हैं, आपकी सोच को खो रहे हैं। दूसरों की राय सुनना, अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना ही बुद्धिमानी है। अंतिम निर्णय आपका ही होना चाहिए। और जब आप किसी भी असमंजस स्थिति में पड़ जाएं, तो आप है वो किसी से भी सलाह लेने में घबराइए नहीं, लेकिन सोच विचार करके निर्णय आपका स्वयं का ही होना चाहिए। बुद्धि उसके आधार पर आपको नए मार्ग दिखा सकती है, लेकिन आपको पथ प्रदर्शक बनने वाले तो लोग रहेंगे, लेकिन आप है अपना निर्णय स्वयं।

यही माना जाता है कि सलाह लेना कमजोरी नहीं है, बुद्धिमानी है, और बुद्धिमानी व्यक्ति अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करता है, मूर्ख व्यक्ति उन्हें बिगाड़ने का प्रयास करता है। तो नैतिकता यही कहती है कि आप सही और गलत की स्पष्ट समझ रखें, उस पर कायम रखें और दूसरों से सलाह ले अवश्य, लेकिन निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए और इसी आधार पर आप है वो आवश्यक कार्य भी कर सकते हैं और खुशहाली और मानसिक शांति भी आपको उससे प्राप्त।

अभी आप कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप शिव भक्ति में रचना सुन रहे थे। लीजिए सुनते हैं अगली रचना शिव भक्ति में। हरिहरन की आवाज में लीजिए सुनते हैं ये शिव भक्तिमय रचना।

सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज में अभी आप शिव भक्तिमय रचना सुन रहे थे। कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

गूंज उठी सहनाई। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में, भरत व्यास के बोल, बसंत देसाई का संगीत।

आकाशवाणी चुरू से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बहार, महेंद्र कपूर की आवाज में। लीजिए सुनते हैं हमराज फिल्म का ये नगमा।

आकाशवाणी चुरू से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बहार। हीर रांझा फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज, केफी आजमी के बोल और मदन मोहन का संगीत।

हरियाली और रास्ता। इस फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गाने के साथ ही आज का गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप गीत बहार कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू

0: केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्री रामचरितमानस गान लीजिए सुनते हैं, बालकांड से संकलित एपिसोड 13, कलाकार गोविंद सिंह और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड 13।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। वे माता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदाई बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

अभी आप श्री राम चरित मानस गान बालकांड से संकलित एपिसोड 13 सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हो गए हैं नमस्कार चुरु कार्यक्रम की एक और नई कड़ी को लेकर के। ज्ञान तु द्विविधम प्रोक्तम शाब्दिकम प्रथमम स्मृतम अनुभव आख्यान द्वितीयम तु ज्ञानम तत् दुर्लभम नृपम। सच ही कहा गया है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो स्मृति जन्य और दूसरा शाब्दिक ज्ञान। दूसरा अनुभव जन्य ज्ञान तो अत्यंत ही दुर्लभ होता है।

ईश्वर के साथ सच्चा समर्पण और ईश्वर का ज्ञान ही सच्ची शांति माना जाता है। एक गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक विचार जब हमें सही और गलत की पहचान करवाता है, हम स्वयं ये जान लेते हैं कि मन की जो सारी हमारी उथल पुथल है, जो मनो में उठने वाले विचारों का जो वेग है, जब हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए उथल पुथल होती है, तो उस समय ईश्वर ही हमें सच्ची और सहयोगी हमारा बनता है और हमारा मन शांत करता है। और यही ज्ञान ही हमें शांति के मार्ग पर पथ प्रदर्शित करती है। सही ज्ञान यानी आध्यात्मिकता और व्यवहारिक दोनों को एक साथ मिलाना आपको जीवन के सत्य से अवगत कराता है, जिसको बाहरी दिखावे और इच्छाओं से मिलने वाली जो अशांति है उसको खत्म करता है, यानी आपके आंतरिक जो अंतर्दृष्टि है उसको विकास देता है आध्यात्मिक ज्ञान। और श्रद्धा और निष्ठा के साथ जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं उसको नियंत्रित करने में भी परम शांति प्राप्त होती है। ज्ञान आत्मा के सभी मूल भावों से जब जुड़ जाता है तो ये ज्ञान का जो स्तर है वो शांति के स्वभाव तक

वास्तविक वस्तु वो जो सदैव रहने वाली हो, और संसार में हर वस्तु समय पाकर नष्ट हो जाती है। धन नष्ट हो जाता है, तन भी जर्जर हो जाता है, साथी सहयोगी सब यहीं पर छूट जाते हैं। केवल एक ज्ञान ही है, एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता।

0: जैसे हो ये।
1: ये पंछियों का शोर, ये हवाओं का गुंजन, ये हमें तभी मिलता रहेगा जब हमारे विलुप्त होते जो पशु पक्षी हैं, हमारी संस्कृति है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो विलुप्त हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। ये सिर्फ जीवों का ही नुकसान नहीं है, बल्कि हमारी उस समृद्ध विरासत का पतन है जो पीढ़ियों से भारतीय साहित्य, कला और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रही है। हमारा जो देश है, जिसमें का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इतना है कि जहाँ जो पशु पक्षी है वो देवताओं के वाहन के रूप में पूजनीय माने गए हैं, और इनके विलुप्त होने से हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं उनका संतुलन भी बिगड़ रहा है। गिद्ध जैसे पक्षी मृत जानवरों को खा करके पर्यावरण को प्राकृतिक रूप से साफ रखते हैं। इनकी संख्या कम होने से बीमारियों और महामारियों का खतरा बढ़ता चला जाएगा। और हमारी बहुत सी ऐसी लोक कथाएं हैं, कविताएं हैं, संगीत पशु पक्षियों की संगीतमय आवाज और विशेषताओं से भरे हुए होते हैं। और जब हमें ये सुनने और देखने को नहीं मिलेंगे, अनुपस्थिति रहेगी, तो हमारी जो भावी पीढ़ी है ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से वंचित रह जाएगी, तो हमारी साहित्यिक और कला का भी नुकसान होगा। हमारे ये जो पशु पक्षी है विलुप्त हो रहे हैं, इसके पीछे अगर कारण देखें तो तेजी से हो रहे वनों की कटाई है, कंक्रीट के जो जंगल यानी शहरीकरण बढ़ रहा है, इन जीवों के रहने की जो जगह है उसको छीना जा रहा है, जानवरों के जो अंग है, त्वचा है, उसका अंधाधुकर शिकार हमारी संस्कृति के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। और जितने भी मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन हैं, बढ़ता हुआ रासायनिक प्रदूषण पक्षियों की जो प्रजनन क्षमता है उस पर भी घातक प्रभाव डाल रहा है। बदलते मौसम का जो चक्र, तापमान में वृद्धि और जीवों के लिए अनुकूल वातावरण को समाप्त करने से जलवायु

परिवर्तन जो बढ़ा, इससे भी ये जो पशु पक्षी हैं वो विलुप्त होने के कगार पर रहते हैं। लेकिन हमारा इस समय यही दायित्व बनता है कि जो हमारी संस्कृति है हमेशा से

बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, उससे हम लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। उस चुनौती को स्वीकार करके हम हमारी जो संस्कृति है उसको बचा पाएंगे और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में असमर्थ होने वाली जो प्रजातियां हैं उनको और अधिक हम है वो संरक्षण देने के लिए कर्तव्य करना कार्य हमें करना होगा। जंगलों की कटाई और भूमि को खेती के लिए खेतों में ही परिवर्तित करना होगा, इससे जो विलुप्त होते पशु पक्षी हैं वो तो बचेंगे ही और हमारी जो संस्कृति है उसका भी हम संरक्षण कर पाएंगे।

श्रोता इस समय आकाशवाणी चूरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। आज है 29 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य रहता है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनकी असाधारण जैव विविधता और सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में दुनिया भर को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्पित पारित करके 2016 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक शहरीकरण और गरीबी जैसी गंभीर जो समस्याएं हैं, ऐसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में और जागरूकता फैलाना था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता मौजूद रहती है। यह दिन उष्णकटिबंधीय देशों को अपने संसाधनों का न्यायसंगत और सतत उपयोग करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करता है।

समय सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम नमस्कार चुरू। कार्यक्रम में बातचीत करते हैं मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के जरिए पिछड़े वर्गों के बीच शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से स्कूल, होटल, वोकेशनल सेंटर्स के निर्माण करने और उनका आधुनिकरण करने का कार्य किया जाता है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा अधूरी शैक्षिक संरचना को उन्नत बनाने और नए ढांचे को विकसित करने की जो प्रक्रिया है उसमें स्कूल कॉलेज का विस्तार है, जहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूलों, आवासीय विद्यालयों और कॉलेज की स्थापना व मौजूद जो भवन है उनके विस्तार के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। छात्रावास का निर्माण करना रहता है। शिक्षा से जो वंचित अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है। और जो तकनीकी और व्यवसायिक केंद्र जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापित करने के लिए के साथ साथ जो लैब उपकरण है, मशीनरी है, कंप्यूटर फर्नीचर खरीदने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। और इसकी जो पात्रता और मानदंड में ये रहता है कि ये सहायता उन मान्यता प्राप्त संस्थानों को मिलती है जहां पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के

10% से अधिक लाभार्थी है और इसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ग्रांड इन एड के लिए पंजीकरण करवाना भी आवश्यक रहता है।

0: अभी आप नमस्कार चूरू कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको याद दिला दें, 8:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले मॉर्निंग न्यूज। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे।

0: ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331048, 0112371717, 0111237

0: 7106 और 0112331444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish AFIH Pro League campaign on a winning note.

0: मियां जी, ये आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या ये ठेका भी नहीं मिला?
1: हाँ, ये ठेका भी हाथ से निकल गया मालती।
0: लेकिन तुम्हारा टेंडर
1: का टेंडर पास हुआ है, इस बार फिर वो बाजी मार लिया गया।

0: हमेशा बरकत मियाँ को ही ठेका क्यों मिलता है?
1: वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मुझे तो लगता है उसने कोई ऐसी गोट फिट कर रखी है जिससे उसे हमारे रेट मालूम हो जाते हैं और वो अपने टेंडर में हमसे कम रेट भर देता है।
0: इस तरह कब तक चलेगा जी? 2 साल से तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे हो, एक भी काम नहीं मिला।
1: सब भाग्य का खेल है मालती।
0: जब बरकत मियाँ से मिलकर काम करते थे तो अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, और जब से तुम दोनों का झगड़ा हुआ।
1: झगड़ा मैंने नहीं किया, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसकी नियत खराब हो गई और आज वो छल प्रपंच करके गुंडागिरी के बल पर हर बार मुझे नीचा दिखा देता है।
0: सुनो, एक बात कहो, तुम बरकत मियाँ से समझौता क्यों नहीं कर लेते? उनसे मिलकर तो देखो, तुम दोनों ने कई साल एक साथ काम किया है, शायद कोई रास्ता निकल जाए।
1: मैं उसकी हवेली पर जाकर दया की भीख मांगू? नहीं, ये नहीं हो सकता मालती, कभी नहीं हो सकता। मैं भूखों मर जाऊंगा, लेकिन बरकत मियाँ के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा।
0: हम लोग भूखे नंगे रह सकते हैं, मगर बच्चों का क्या होगा? सुजाता एमए करने के बाद घर में बैठी है, उसकी शादी करनी है, और इधर मनोज और गीता की पढ़ाई का खर्च भी कुछ कम नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मनीषा और राहुल की तरह इन लोगों को भी नाना क्या भेज दो?
1: मनीषा और राहुल को नाना क्या मैंने नहीं भेजा था, तुम्ही ने जिद की थी।
0: हाँ, मैंने जिद की थी, यहाँ उनकी जिंदगी खराब हो रही थी। तुम्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि बच्चों के भविष्य के बारे में भी कुछ सोचो।
1: देखो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब ना करो। धंधा ठीक हो जाए तो गृहस्थी की गाड़ी फिर लीक पर आ जाएगी।
0: धंधा कैसे ठीक होगा? बरकत मियाँ के पास तुम जाओगे नहीं, ठेका तुम्हें मिलेगा नहीं।
1: सोचता हूँ ठेकेदारी छोड़कर कोई और धंधा करूँ।
0: नया धंधा जमाना आसान नहीं है, जीवन भर ठेकेदारी की है। मेरी बात मानो, बरकत मियाँ से समझौता कर लो। एक तो बड़े ठेके मिल जाएंगे तो सुजाता के लिए दहेज जुटाने में देर नहीं लगेगी। तुम तो आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हो, मेरे कलेजे से पूछो, 24 साल की हो गई है सुजाता। भगवान ने ऐसा रूप रंग भी नहीं दिया है कि कोई बिना दहेज लिए उसे अपनी बहू बना ले।
1: रूप रंग ही सब कुछ नहीं होता मालती, हमारी सुजाता पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी के कामों में चतुर है, हंसमुख है, मिलनसार है।
0: इन गुणों का कोई मूल्य नहीं है आजकल। सुजाता की सभी सहेलियों की शादी हो चुकी है, कुछ तो माँ भी बन गई हैं। क्या बीतती होगी सुजाता के मन पर, उसकी हंसी के पीछे छिपा दर्द तुम्हें नहीं दिखाई देता, पर मैं समझ सकती हूँ, माँ हूँ ना।
2: हेलो डैड, सब ठीक ठाक है ना?
1: मैं तुमसे 100 बार कह चुका हूँ मनोज, मुझे डैड वेड पसंद नहीं, बाबूजी कहा करो।
2: लेकिन जो आदर और प्यार डैड में है वो बाबूजी में नहीं। डैड में अपनापन है, क्लोजनेस है, बाबूजी में दूरी है, आतंक है, टेरर है।
0: मनोज, तेरे बाबूजी वैसे ही परेशान है।
2: परेशान है? व्हाट्स द मैटर? क्या बात है डैड, आई मीन बाबूजी?
1: आज जो टेंडर खुले उसमें मैं बरकत मियाँ से मात खा गया, मुझे काम नहीं मिला।
2: बस इतनी सी बात है? अगर आप कहें तो अपने 10-20 साथियों के साथ उस कमीने को घेर कर उसके हाथ पैर तोड़ दूं।
1: खबरदार, जो ऐसी बात फिर कभी मुझसे निकाली। हम ठेकेदार हैं, गुंडे लफंगे नहीं।
0: तुझे क्या हो गया है मनोज? कॉलेज में मारपीट करना ही सीखता है तू? कैसे है तेरे दोस्त, क्या चाहता है तू? अगर बरकत मियाँ अस्पताल गए तो क्या तू जेल जाने से बच जाएगा?
1: हमारा नाम रोशन करेगा तू? नगर के प्रतिष्ठित ठेकेदार रामेश्वर बाबू का बेटा जेल में? अखबार वाले नमक मिर्च लगाकर खबर छापेंगे, यही चाहता है तू?
2: आई एम सॉरी बाबूजी, मुझे 500 रुपए चाहिए।
1: किस लिए?
2: हमारे क्लास के लड़के टूर पर जा रहे हैं।
0: जाने दो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है।
2: मम्मी, हर लड़के का जाना कंपलसरी है, ये पढ़ाई का टूर है, पिकनिक वाला नहीं।
1: तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मुझे सब मालूम है, 1 साल फेल हो चुके हो, लगता है इस बार फिर फेल होने का इरादा है।
2: इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा, बिलीव मी बाबूजी, दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता हूँ। प्लीज बाबूजी, 500 रुपए दे।

0: लीजिए, बहुत छोटी रकम है आपके लिए, अपने बेटे के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते।
1: मेरे पास फिजूल खर्च के लिए रुपए नहीं है।
0: ये फिजूल खर्च नहीं है, हिस्ट्री का टूर है। लौटने के बाद एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, उस पर नंबर मिलेंगे और ये नंबर सालाना एग्जामिनेशन के नंबरों में जोड़े जाएंगे। अगर मैं नहीं गया तो नंबर कम मिलेंगे, फिर आप कहेंगे नंबर कम क्यों आए। मेरी प्यारी प्यारी माँ, आप ही समझाइए ना बाबूजी को।
2: सुनो, अब पढ़ाई की बात है तो दे दो ना।
1: कह चुका हूँ ना, मैं नहीं दे सकता,
0: मैं फेल हो जाऊंगा माँ।
2: कोई बात नहीं बेटा, मैं दे दूंगी।
0: थैंक यू मम्मी।
3: हेलो एवरीबॉडी, मम्मी को किस बात का थैंक्स दिया जा रहा है भैया?
0: तुझसे मतलब, तू अपना काम कर।
2: आज बहुत देर हो गई कॉलेज से लौटने में,
3: एक्स्ट्रा क्लास था ना
1: गीता? एक्स्ट्रा क्लास था या किसी सहेली के साथ मटर गश्ती कर रही थी?
3: डैड, आई मीन बाबूजी, आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं मनोज भैया की तरह झूठ नहीं बोलती।
0: ए गीता, तू मुझे झूठा कहती है?
3: नहीं तो क्या, झूठे तो
0: मैं झूठा हूँ।
2: हाँ बिल्कुल। हाँ, ये नोक झोंक बंद करो, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है।
3: ओह, आई एम सॉरी, क्या हुआ बाबूजी को? डॉक्टर को फोन करूँ?
1: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो बस।
2: आओ तुम लोग मेरे साथ।
3: वन मिनट प्लीज। बाबूजी, मेरे कॉलेज में गरीब बच्चों के लिए चैरिटी शो हो रहा है, हर लड़की को 200 रुपए देने होंगे।
1: ओफो, कान खोल कर सुन लो, तुम लोगों की ये रोज रोज की फरमाइशें मैं पूरी नहीं कर सकता। कभी टूर, कभी चैरिटी शो, कभी ये फंड, कभी वो चंदा।
3: मगर बाबूजी, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है।
0: हाँ बाबूजी, ना देने से हम लोग ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, सबके सामने हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी, हम टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की नजरों से गिर जाएंगे।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को ये अपमान, फ्रस्ट्रेशन झेलना पड़े? पैसा तो हाथ का मैल होता है बाबूजी, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
1: मुझे उपदेश मत दो, मैं सब समझता हूँ, अपनी माँ से मांगो रुपए, मैं नहीं दे सकता।
2: माँ के पास कौन सा खजाना रखा है जो रोज रोज इन लोगों की मांगे पूरी करती रहूंगी? आखिर सुजाता भी तो एमए तक पढ़ी है, उसने तो कभी एक पैसा तक नहीं मांगा,
3: तब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होती थी माँ।
0: आजकल पढ़ाई का सिस्टम बदल गया है बाबूजी।
2: ठीक है ठीक है, इस बार तो मैं रुपए दिए देती हूँ, पर एक बात समझ लो, आगे से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अब आओ मेरे साथ, अपने बाबूजी को आराम करने दो।
1: कैसे है ये बच्चे जो ये नहीं समझते कि 2 साल से एक भी काम नहीं मिला है, एकदम बेकार बैठा हूं, या समझ कर भी समझना नहीं चाहते, सब अपनी ही धारा में बह रहे हैं, माता पिता के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं। क्या जमाना इतना बदल गया है
3: बाबूजी। चाय लीजिए। अब आपकी कैसी तबीयत है?
1: मेरी तबीयत का क्या होगा बेटी, एकदम ठीक हूँ, आओ बैठो।
3: इस बार भी आपका टेंडर पास नहीं हुआ?
1: अरे तुझे कैसे मालूम हुआ?
3: मैं आपकी और माँ की बातें सुन रही थी।
1: अरे तो क्या हुआ, इस बार नहीं तो अगली बार काम मिल जाएगा, बरकत मियाँ कब तक राह में रोड़े अटकाएंगे?
3: यही मैं भी कहने वाली थी बाबूजी, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
1: मैं कभी हताश नहीं होता बेटी, लेकिन अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा, हर जगह जोर तोड़, घूसखोरी, धंध फंद है, और अब तो ठेकेदारी का काम वही कर सकता है बेटी जिसके पीछे गुंडों की फौज हो। समझ में नहीं आता क्या करूं।
3: कोई और काम कीजिए बाबूजी।
1: मगर तुम्हारी माँ का कहना है कि उम्र भर तो ठेकेदारी की है, अब नया धंधा जमा नहीं पाऊंगा। उनकी राय है कि मुझे बरकत मियाँ के पास जाना चाहिए, उनसे समझौता कर लेना चाहिए, जिससे 2-4 बड़े काम मिल जाएं और
3: मेरे लिए दहेज जुट सके। बाबूजी, आप बरकत चाचा के यहाँ जाना चाहें तो अवश्य जाएं, मिलजुल कर पहले की तरह काम होने लगेगा तो ठीक ही रहेगा, और पढ़ाई खत्म करके मनोज भी आपके साथ लग जाएगा। लेकिन आप मेरे दहेज के लिए वहाँ जाएं, ये मुझसे सहन नहीं होगा। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए बाबूजी।
1: सयानी बेटी के माँ बाप को चिंता तो लगी ही रहती है बेटी, जब तक तेरे हाथ पीले नहीं हो जाते।
3: हाथ पीले होना ही तो सब कुछ नहीं है बाबूजी, आपने मुझे ऊंची शिक्षा दिलाई है, अच्छे संस्कार दिए हैं, यही मेरे लिए बहुत है। आपने मुझे इस योग्य बना दिया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं।
1: तुम कहना क्या चाहती हो सुजाता बेटी?
3: मुझे नौकरी करने की आज्ञा दें बाबूजी।
1: तुम नौकरी करेगी? ठेकेदार रामेश्वर बाबू की लड़की

0: ये नौकरी करेगी।
1: इसमें बुराई क्या है? आजकल लड़कियां जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बैंकों में काम करती हैं, दफ्तरों में काम करती हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। मेरी एक सहेली चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप हमें कुछ काम करने का मौका तो दें बाबूजी।
0: ठीक है, मैं मानता हूँ, मगर मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा।
2: ये नौकरी की क्या बात हो रही है जी?
0: सुजाता नौकरी करना चाहती है।
2: क्यों?
0: इसी से पूछो।
2: तुझे किस बात की कमी है बेटी? कौन सा शौक तेरा पूरा नहीं करते हम? फिर तुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की? ये भी सोचा है तूने, लोग क्या कहेंगे? बड़ी जग हसाई होगी हमारी। लोग यही कहेंगे ना कि ठेकेदार साहब का धंधा चौपट हो गया तो बेटी की कमाई खा रहे हैं।
1: माँ, लोगों के कहने की चिंता मत करो। मैं मनोज और गीता की तरह नादान तो नहीं कि बाबूजी की हालत ना समझ सकूं। 2 साल से एक भी ठेका नहीं मिला और घर गृहस्थी के खर्च में कोई कमी नहीं। ऊपर से मनोज और गीता के महंगे शौक इस तरह कितने दिन चलेगा? मैं दिन भर घर में ही तो पड़ी रहती हूँ। आखिर शिक्षा दीक्षा किस दिन काम आएगी? मैं नौकरी करके बाबूजी का बोझ बांटना चाहती हूँ। माँ,
0: सुन रही हो इसकी बातें मालती?
2: सुजाता बेटी, अभी जाओ, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। तेरे बाबूजी वैसे ही परेशान हैं।
1: ठीक है, मैं जा रही हूँ माँ, लेकिन आप दोनों मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार जरूर करिएगा।
2: दिन भर घर में रहते रहते ऊब गई है बेचारी। मैं कहती हूँ जी कि अब जल्द से जल्द शादी करो इसकी, चाहे अपनी ससुराल।
0: 2-3 लड़के हैं मेरी नजर में, मैं बात चलाऊंगा।

घर घर की बात, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक थे विनोद रस्तोगी और प्रस्तुति थी मधु श्रीवास्तव की। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.7 MHz पर।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको याद दिला दें, दिन में 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। सुबह के 8:45 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले समाचार तरंग।

0: खेती के जो तौर तरीके हैं वो भी काफी बदल गए हैं, उनकी तकनीक और नीतियां। और आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, सारे किसान भाइयों को भी नमस्कार, राम राम।
0: सर सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे 11 अंकों की जो विशिष्ट आईडी है, जिसे हम फार्मर आईडी या किसान आईडी कहते हैं, आखिर क्या है और इससे किसानों

0: को क्या फायदा हो रहा है, राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है?
1: मैम, जो फार्मर आईडी है ये एक तरीके से कृषि का आधार है
0: जी।
1: जैसे आधार कार्ड है, कृषि का आधार कार्ड है ये। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने

0: ये एग्रीस्टेक एक परियोजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत किया गया है। इसमें किस किसान के पास कितनी जमीन है, उसका खसरावार, उसका डिजिटल सर्वे सारी, मान लीजिए एक किसान के पास 5 जगह अलग अलग जगह है तो भी वो उसको सारी जगह उसके अंतर्गत उसको पूरा डिफाइन किया गया है, यानी एक पूरी तरीके से फार्मर की विवरण है। और इससे जुड़ा हुआ एक और मैं आपको निवेदन करूं, मैं कल ही राजसमंद उदयपुर से आया हूं, तो हमने आईटी के माध्यम से जो फार्मर आईडी है इसके माध्यम से किसानों को सशक्तिकरण करने के लिए वहां पे पायलट बेस पे राजसमंद और सिरोही में हमने इसकी शुरुआत की है, और किसान इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपने जो उर्वरक है उनकी बुकिंग कर लेते हैं, उनको लंबे लाइन में वेट नहीं करना पड़ता। काला बाजारी और जो यूरिया को, जैसे मैं आपको बताऊं एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो 267 रुपए में किसान को जो यूरिया का बैग मिलता है 45 किलो का, उस पर सरकार 1600 रुपए तक सब्सिडी देती है। इतनी सब्सिडी के कारण जो दूसरी जगह यूज होते हैं वहां भी किसान इसका, किसान को ही मिले, दूसरे लोग इसका दुरुपयोग नहीं करें, उनकी कालाबाजारी नहीं हो। इस ऐप में एक ये भी रहेगा कि किसान को ये पता रहेगा कि किस डीलर के पास कितना स्टॉक है, वहीं पे उसको QR कोड जनरेट होगा। किसान अपने QR कोड हुआ वो QR कोड ले जाके जिस दुकान पे उसने बुक किया डीलर के पास, वहां उसको वांछित मात्रा में यूरिया और जो अन्य
1: आपने बताया हमें ये फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम के बारे
0: जी
1: में। जी सर, चर्चा में हम बात नई पहलों की कर रहे हैं, तो खेत बचाओ अभियान जो अभी चल रहा है और 30 जून तक चलेगा, आखिर वो क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
0: देखिए मैम, खेत बचाओ अभियान ने भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों में हम विगत समय से अधिक उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा संख्या में उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, ये चीजें डाल रहे हैं, यूरिया, एनपीके, और इन चीजों से क्या है, खेती में एक बार तो उत्पादकता हमें लगता है कि बढ़ रही है, लेकिन उसी क्रम में हमारी जो खेत की जो क्वालिटी है, जो हमारी मिट्टी की क्वालिटी है, वो खराब होती जा रही है। फिर आप देखें इसके स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ रहे हैं। आप देखें इतने सारे कैंसर के मरीज आ रहे हैं, अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि यूरिया और कीटनाशक हम सीधा ले रहे हैं। तो खेत बचाओ अभियान में हम किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए और जो यहाँ पे जो प्राकृतिक ढंग से है वो खेती करें, यूरिया का जितना प्रेस्क्राइब उपयोग है उतना करें। पुरातन संस्कृति में हमारे जो खेती में जो सूक्ष्म जीवांश होते हैं उनकी मात्रा कैसे बढ़ाएं, उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, तो उन पे हम जोर दे रहे हैं, कैसे आगे वो अपने प्रोडक्ट बेच पाए, कैसे वो प्राकृतिक खेती को सर्टिफाई करा पाए, तो इसमें इस तरह के बहुत सारे विस्तृत कार्यक्रम चल रहे हैं।
1: सर, अगर हम इसमें कुछ ऐसी लचीली फसल की किस्मों की बात करें, चाहे वो मशरूम हो, लीची हो, स्ट्रॉबेरी हो, तो कई तरह के प्रयोग इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
0: बिल्कुल मैम, इसमें हम अब जैसे मैं कल गया था, महाराणा प्रताप उदयपुर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है मशरूम के क्षेत्र में, तो उन्होंने मशरूम चूंकि पूर्णतः एक कंट्रोल्ड वातावरण में होती है, तो हम इसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। इसी तरह जो ढेंचा के बीज हैं उनको हम लगा रहे हैं, तो जो प्राकृतिक खेती से संबंधित जो उसके साथ एक क्रॉप सम्मिलित रूप में हो सकती है, उस पर भी हमारा पूरा जोर है।
1: सर, लगातार बात हो रही है राजस्थान को एग्रीटेक हब बनाने की, तो इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य है, और जब ऐसा संभव होगा तो किसानों को व्यावहारिक रूप में आखिर इससे क्या लाभ मिलेगा, और आधुनिक तकनीक या हम कहें कि बाजार आधारित खेती, इस बारे में किसानों को कैसे समझाया जा रहा है?
0: देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान जो दलहन के क्षेत्र में प्रथम है, मूंग, बाजरा, ग्वार जो में हम प्रथम है, इसी तरह जो सरसों के क्षेत्र में हमारे जो तिलहनों में ओवरऑल हम द्वितीय है, लेकिन सरसों में हम प्रथम है, और 4,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई अंतर हमारे जो है वो लगाई गई है, और पीएम कुसुम में हम राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में देश में प्रथम स्थान पे हैं। तो हमारा किसान न केवल खेती कर रहा है पर बल्कि सोलर की भी खेती करता है, सोलर एनर्जी की भी खेती कर रहा है, तो यहाँ बहुत संभावनाएं हैं राजस्थान में काम करने की। इसमें जो हमारा एग्रीस्टेक, जैसे मैं आईटी का आपने पूछा, तो हम

0: सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन AI इन एग्रीकल्चर बना रहे हैं, राज एम्स बना रहे हैं, हमारे राज किसान सारथी पोर्टल है उस जिसमें 58 से अधिक मॉड्यूल है देश में, इसको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, इसके माध्यम से हम सारे DBT किसान के माध्यम से कर रहे हैं। तो और राइजिंग राजस्थान में भी हमारे बहुत सारे MOU हुए हैं, तो कृषि के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं।
1: और ये जो राज सारथी किसान सारथी ऐप है, ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है?
0: हाँ मैम, ये हमने राज किसान साथी पोर्टल जो हमारा राजस्थान में मैन हमने इसमें विकास किया है हमारी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, बहुत सारी भाषाओं में, चूंकि राजस्थान में हिंदी का तो हिंदी में है, सारे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की है, चाहे हॉर्टिकल्चर की है, सारी जो है किसान इसके माध्यम से ही अप्लाई करते हैं, इसके माध्यम से उनको DBT हो रही है। इवन हमने जो अब के मिनीकिट में बीज वितरित किए हैं, जो इसके मूंग के हैं, मक्का के हैं, दूसरे सारी चीजें वो इसके माध्यम से वितरित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम फार्मर ID जो कि वेरिफाइड है इसके साथ अटैच कर रहे हैं, जनाधार में हमने फार्मर ID को अटैच कर दिया है, तो आने वाले समय में किसान भाइयों को अलग से डॉक्यूमेंट देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हर एक स्कीम के लिए जो अलग अलग डॉक्यूमेंट देते हैं वो डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, एक साथ में अपना फार्मर ID डाला, उसी से OTP आया और अपना वेरीफाई। तो मैं आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जिनकी भी फार्मर ID नहीं बनी है या उनको लगता है कि उनका जमीन का कुछ हिस्सा उसमें नहीं जुड़ा है, वो ज्यादा से ज्यादा ई-मित्रा में जाके हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी है वो संपर्क करें, उनसे संपर्क करें।
1: सर, हमारा देश और प्रदेश जो है कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि जो है बहुत हद तक मौसम पर आधारित है और ये चीजें हमारे हाथ नहीं होती, कई बार कुदरती आपदाएं भी आ जाती है। ऐसे में जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो PM फसल बीमा योजना उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। राजस्थान में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है और कितने किसानों ने इससे जुड़कर लाभ उठाया है?
0: राजस्थान में सबसे पहले बताऊं, देश के पॉलिसी जारी करने में, बीमा पॉलिसी जो कृषकों की है उनको जारी करने में देश में प्रथम स्थान पे है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम देश में पॉलिसी जारी करने में प्रथम स्थान पे हैं। एक छोटा सा फिगर देता हूँ मैम आपको कि कितना इसमें होता है। 2016 से अब तक लगभग 23.32 करोड़ पॉलिसीज हमने पूरे प्रदेश में जारी किए और किसान ने उसके लिए लगभग 7,800 करोड़ रुपए उन्होंने किसान ने प्रीमियम के रूप में जमा कराया है, और उसके विपरीत उसको लगभग 32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि बीमा क्लेम के रूप में मिली है। बहुत बड़ी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें पूरा योगदान देते हैं। आप देखें, लगभग 19,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसमें अपना जो अंशदान दिया है, ऐसा ही राज्य सरकार ने 19,000 करोड़ से अधिक योगदान दिया है इसमें। खरीफ में सिर्फ उसको 2% प्रीमियम देना पड़ता है, रबी में 1.5% उसको प्रीमियम देना पड़ता है, और अगर ये स्वैच्छिक है किसान बाहर रहना चाहे इस योजना से बाहर रह सकता है, और लगभग 24 फसलें रबी की और 24 खरीफ की फसलों को इसमें शामिल किया गया है।
1: कोशिश ये की जाती है सरकार की तरफ से कि किसानों को पूरी तरह से गुणवत्ता वाले बीज मिले। तो ये जो गॉट टेस्ट की बात आती है और बीजों के प्रमाणीकरण, आखिर इसके पीछे क्या सोच है और क्या कदम उठाए गए हैं?
0: जैसे कि आप कह रहे हैं, बीज का मूल यही है कि जो बीज अगर सही है तो किसान की फसल सही होगी, सारी चीजें होंगी। तो इसके लिए हम जो लाइसेंस जो है वो पूरा एक प्रोसेस में बीज दिया जाता है, 3 साल के फसल कटाई के जो प्रयोग है वो उसको सबमिट करने होते हैं, उसके बाद एक लंबे प्रोसेस के बाद बीज का प्रमाणीकरण होता है। मीनवाइल इसमें अगर बीज सही है कि जैसे आपने कहा कि किसान का जो DNA फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट है इसका बीज का, वो भी हम करवाते हैं कि उसकी बीज की उपादेयता सही हो। राज्य सरकार जो है यहाँ स्टेट हमारा कृषि बीज निगम है उसके माध्यम से हम वो खरीद करते हैं, जिससे जो उपयुक्त और प्रमाणित बीज है वो प्राप्त हो सके, उसकी डिफाइन होती है। अभी मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी गया, वहाँ उन्होंने प्रताप नस्ल और मूंगफली और मक्का के उन्होंने बीज बहुत सारे अच्छे डेवलप किए, नई नई वैरायटी। इसी तरह काजरी ने बहुत सारी अच्छी वैरायटीज, एक
1: बड़ी किस्में,
0: हाँ उन्होंने एक को हम पूरे प्रदेश में कैसे लागू करें उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं।
1: युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए, और अगर

0: खास तौर पे हम छात्राओं की बात करें तो क्या कुछ एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है?
1: हमारा मंतव्य है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, तो इसके लिए जो 10+2 में बालिकाएं अध्ययनरत हैं उनको हम 15,000 रुपये प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते हैं। इसी तरह जो UGPG कर रही है, स्नातक स्नातकोत्तर बालिकाएं कर रही हैं, उनको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दे है। इसी तरह अगर कोई PhD बालिका कर रही है तो उसको 40,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है।
0: सर, आप युवाओं और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग करे तो बहुत सारे, एक ही खेत में बहुत सारी चीजें, वहां पे वो फसल भी लगाए, वहां पे जो फल फ्रूट भी लगाए, सब्जियां भी लगाए, प्लांटेशन भी करे, फिशरीज भी करे, पशुपालन भी करे। द्वितीय IT का बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है इसमें, और सबसे बड़ा है कि कृषि में जो लोगों ने पहचान लिया है कि देखिए एक दाना जो है वो कितना लाखों दाने बन सकता है, तो बहुत बड़ी इसमें रिटर्न ROI है, बहुत बड़ी संख्या में रिटर्न। लेटेस्ट रिसर्च हो रहे हैं, किसान जो कैश क्रॉप्स है परंपरागत कृषि से हटेकर नई नई कृषि पे जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसको अधिक मात्रा में उनको जो मूल्य है वो मिल रहा है। और सबसे बड़ा है कि पानी के लिए भी, जो राजस्थान में पानी की कमी, उसमें एक हमारा राज्य सरकार की स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसमें सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से हम बहुत सारा इसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे निवेदन करूं कि लगभग 35,000 पॉन्ड बने हैं, अब 12,500 हमारे डिग्गियां बनी है, 32,000 किलोमीटर हमारी पाइपलाइन लगी है, हमारे 39 लाख मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउसेस बने हैं, 16 लाख मीटर क्षेत्र में शेड टीन लगा रहे हैं, 27 लाख मीटर लो प्लास्टिक टनल लगा रहे हैं। ये इवन आप देखेंगे राज्य सरकार की एक और बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, 41,000 किलोमीटर हम लंबी हमने खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी भी लगाई है,
0: और तारबंदी पे अनुदान
1: मिल रहा है। तो इस तरह से कृषि का क्षेत्र में जो पुरातन था कि एक या दो फसल ले रहे थे, वो उसके बजाय मल्टीपल फसल उसमें ले रहे हैं।
0: यानी कुल मिलाकर कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आए हैं और राजस्थान ने देश में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है। कृषि आयुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे अनुमति ले उससे पहले आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सिद्धार्थ जैन, तकनीकी सहयोग सौरभ शर्मा, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, संपादन माधुरी वशिष्ठ और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में, 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित, श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो, और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण

0: हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली रिफाइनरी देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर कल बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी परिसर और प्रस्तावित जनसभा का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
2: पश्चिमी राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम होने वाला है, कई वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे, और ये राजस्थान के भाग्य को बदलने वाली हमारी ये रिफाइनरी, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाली हमारी ये। आज मैं यहाँ रिफाइनरी में आया हूँ, मैंने यहाँ व्यवस्थाओं का देखा है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, बाड़मेर बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन होने जा रहा है, जो आपको इंतजार था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को देश के ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य के 59,217 बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई गई। ये अभियान आज और कल भी जारी रहेगा। अभियान के तहत राज्य के करीब 1,04,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत आज और कल स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इसके लिए 75,000 से अधिक टीमें बनाई गई है, जिनमें मोबाइल और ट्रांजिट टीमें भी शामिल है। ये टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईंट भट्टों और दुर्गम क्षेत्रों में मुस्तैदी से काम कर रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा दवा से वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आज जयपुर के बिड़ला

0: ऑडिटोरियम में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जन सहभागिता और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा होंगे। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 154 भामाशाह, 99 प्रेरक और 23 NRI दानदाता शामिल हैं। इन सहयोगियों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 318 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। देश भर में आज महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान लोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम अनब्लॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली जिले में सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग पर कृषि विभाग के सभागार में चर्चा आयोजित की जाएगी। वहीं करौली जिले में आंकड़ों के महत्व पर जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई है, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सांख्यिकी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि जिले के विकास की दिशा तय करने का सशक्त माध्यम बन रही है। करौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कृषि, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग में प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग लगातार बढ़ा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जा रही है और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। सांख्यिकी दिवस पर आयोजित होने वाली कार्यशाला में प्रशासनिक आंकड़ों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सुशासन और विकास को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा होगी। बागेवारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रदेश में इन दिनों मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मॉनसून गुजरात की उत्तरी सीमा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम की बात करें तो डबोक में सबसे अधिक 33 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ में 10 और पिलानी में 7.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान का श्रीगंगानगर 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर में 43.2 और जैसलमेर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभागों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है, FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है समूह स्वरों में देश गान।

चंदन है माटी मेरे देश की, समूह स्वरों में ये देश गान अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश खिदमत है फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल।

महफिल कार्यक्रम के आगाज में आइए सुनते हैं धर्मा फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये कव्वाली वर्मा मलिक के बोल सोनिक ओमी का संगीत।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

अभी आप फिल्मी कव्वालियों का कार्यक्रम महफिल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक।

किशोर दा ने बिना किसी औपचारिक संगीत प्रशिक्षण के अपने जादुई और बहुमुखी आवाज से हजारों सदाबहार गीत गाए और आज भी वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं।

किशोर दा ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और देवानंद जैसे दिग्गज सितारों के लिए अपनी आवाज का जादू बिखेरा और उनके बहुत ही लोकप्रिय और सदाबहार गीत

0: अनजान के बोल राजेश रोशन का संगीत, याराना फिल्म का ये गीत और किशोर कुमार की आवाज। किशोर कुमार का असली नाम था आभास कुमार गांगुली। इनका जन्म खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। इनके बड़े भाई अशोक कुमार एक प्रसिद्ध अभिनेता रहे और किशोर कुमार चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं।

0: कर ले।
1: जोनी मेरा नाम फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज, इंदिवीर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। किशोर कुमार के गाने अपनी अनूठी शैली, भावनाओं के सटीक प्रदर्शन और सदाबहार गायकी के कारण हमेशा से मशहूर रहे। उन्होंने महान संगीतकार एसडी बर्मन ने अपनी शैली विकसित करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना, देवानंद और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के लिए भारतीय सिनेमा में गाने गाकर इतिहास रचा।

पल। ब्लैकमेल फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत भारतीय संगीत के इतिहास में महान, प्रभावशाली और सबसे ऊर्जावान गायकों में से एक माने जाते हैं किशोर कुमार।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

किशोरदा अपने गीत की भावनाओं को गहराई से महसूस करते थे। गीतों में भी अभिनय जैसा समर्पण दिखाई देता था। ये गाना शराबी फिल्म का, जिसे रिकॉर्डिंग करते समय उन्होंने नशे में डूबे किरदार की भावनाओं को जीवंत करने के लिए लेट कर ये गाना गाया।

अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में किशोर कुमार ने संगीतकार एसडी बर्मन से सलाह ली और अपने मौलिक जो शैली थी उसको खोजने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और विशिष्ट तकनीक उन्होंने गाने के लिए अपनाई। एसडी बर्मन के अलावा आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी जैसे दिग्गज संगीतकारों ने उन्हें शानदार गीत दिए जो कि पीढ़ियों तक याद रखे गए हैं। मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बॉल और आरडी बर्मन का संगीत।

भारतीय सिनेमा के श्रेष्ठ पार्श्व गायक और अभिनेता को कई बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तो श्रोताओं, ये था आज का चित्रलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से हमें दे अनुमति। नमस्कार।

आज आप किशोर कुमार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के, उजाले।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था।

0: सदा शिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
1: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं, और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है, और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी, जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
0: हैं, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
1: हाँ,
0: वो तो किसी भी विषय का जिक्र करें
1: करेक्ट
0: तो वो पेज खुल जाएगा,
1: करेक्ट,
0: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
1: हाँ, वैसे तो he himself was a सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
0: yes.
1: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
0: एक व्यापक दृष्टिकोण,
1: व्यापक दृष्टिकोण है, ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है। पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए है जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी।
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है। मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ, बिल्कुल यहाँ से ही आगे चलेंगे।
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बम्बई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि दादाजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा,

0: ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है। फिर उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये।
1: जी
0: हम लोग बंबई आए, और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमिजिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी।
0: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे, और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह
0: फिर
1: वाह
0: एक
1: वाह।
0: सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते।
0: ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे, कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे, इस तरह से था। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर तारा, पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल। सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं और
0: हाँ
1: रातों
0: हाँ
1: रात बंदा स्टार बन
0: स्टार
1: जाता
0: बन
1: है
0: जाता है, करेक्ट
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और यहां अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या
0: क्या
1: धमाका हो
0: हुआ
1: चुका है।
0: है, करेक्ट।
1: वाह।
0: उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे, तो वहां पर बस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था, तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने
0: उस
1: फोन आ रहे हैं
0: इतने फोन आने लगे,
1: तुम्हारे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-6, 7-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर
1: जी
0: बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था, और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है 1 हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
0: एक्चुअली।
1: करता
0: तो 1 हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था।
1: था।
0: मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है, कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा, हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे, और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ, तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था, मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो

0: टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी. पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडरवैल्यू कर रखा है.
1: अरे सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी. जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा. उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे, पर छूटा कभी नहीं था.
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे. तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था. तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था. तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली. और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है. उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ, जो सुपर हिट था. और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बन चुके, बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक. तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग. तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे. क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं. काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है. पापा भी उससे छूटे नहीं हैं. पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था. और वो प्ले बहुत ज्यादा चला. उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए. पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा. राइट. सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: थी, उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. तो इसलिए उनका वो छूटा. पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो.
1: ओके, सोलो था.
0: सोलो था और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर.
1: क्या बात है, क्या बात.
0: ये 2003-04 की बात कह रही
1: हूँ. किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं, चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले. और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले. सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है. ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है.
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था.
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था. तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड. उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे. हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे. और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी, इसलिए वो नहीं हो पाया.
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत. मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया.
1: वो बड़ी थी और
0: वो बड़ी थी, समझदार थी. क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे. तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है.
1: बिल्कुल.
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है. और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया. तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे. क्योंकि पा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल

0: साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
1: अच्छा, तो उससे
0: अंदाजा था शायद पापा आजकल वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा। ये फिल्में देखनी है और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
1: ओके।
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमराज होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वा, वा।
0: जहां पर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है।
1: वाह।
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं, उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना, तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अउसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे, तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूँ मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अउसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे।
1: वाह वाह।
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। ये सब लेखक थे। लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा

0: उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं बिल्कुल बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे, और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा सबको खिलाते थे।
1: हाँ।
0: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बई में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह। हाँ,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई, उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निळू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निळू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
0: नाटक करके, जो
1: नाटक
0: जिसका
1: करके
0: जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा
1: ही, ज्यादा ही। तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और निळू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब,
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते
1: हैं। हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो पापा ने कहा जरूर क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए।

0: और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, निणु फुले, पापा, तनुजा,
1: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल, एग्जैक्टली,
0: हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका। और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे, झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
1: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
0: बहुत ही
1: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने के हिसाब से।
0: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की। इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था। और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, बॉम्बे में पापा ने पढ़ा, और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
1: गजब।
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम, तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे, तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है, और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम, और ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज है जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ चाहिए, अच्छा चलो तुम मम्मी को बोल दिया, अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात ये लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों

0: ये सिस्टम सेम थी, जैसे मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग, और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में मैं
1: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: वो बताएं।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा, रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो। मम्मी ने कहा अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था। इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती। पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था। तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त, और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है, बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे। वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली? तो पापा ने, कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूँ मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है, जिसके नीचे लड़के लड़का नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया, देखो पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था वो किस्सा, इस तरह से कुछ हुआ था।
1: और किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहाँ नजर आता है।
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे, इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता था। उन्हें
0: बहुत करीब से देखी हुई थी,
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि

0: हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाना सुनते हैं, दो आंखें बारह हाथ का, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ऑफ कोर्स।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा

0: हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद 11:05 पर श्रोता सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दिन में 12 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 12:30 पर आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं उम्मेद सिंह सैनी। दिन में 1:05 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन। चर्चा होगी धैर्य और समझदारी से निकलता है हर समस्या का हल। एक और चर्चा होगी बच्चों के साथ साझा करें अपना बचपन, खुद पर भरोसा करें और अपनी सोच को लचीला रखें। शुद्धों आज है सोमवार और आज दिन में 2:30 हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मेल बॉक्स। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता आज दिन में 1 बजे तक हमें अपना ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है manbhavanchuru@gmail.com।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे युववाणी के साथ। आज की चर्चा का विषय है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एक और चर्चा होगी अपनी कमजोरी को ताकत बनाए युवा, सफलता नहीं सार्थकता जरूरी, और गीत संगीत भी आपको सुनवाया जाएगा। देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा शाम 6:10 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा आकाशवाणी जयपुर से शाम 6:40 पर। संध्या 7 बजे खेती और गृहस्थी कार्यक्रम होगा। आज की चर्चा का विषय है इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्य, खेती किसानी में महिलाओं का योगदान, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के तरीके। रात 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता।

बजकर 15 मिनट पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। 9 बजकर 30 मिनट पर हम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

श्रोताओं, आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम खेल जगत। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा हमारे केंद्र से रात 10:30 पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: महेंद्र कपूर आशा भोसले की आवाज में श्रोता सुन रही थी गुमराह फिल्म का गाना।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गंगा जमुना फिल्म का गाना। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कुंज बिहारी के साथ। हिना फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पर लता जी की आवाज़ में।

गुरु फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे ए आर रहमान और चिन्मयी की आवाज में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से चित्रपट संगीत।

आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में मोहब्बत फिल्म का गाना। लीजिए मोहब्बत फिल्म का ये गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत आकाशवाणी के चूरू केंद्र से।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में श्रोता सुन रही थी अंदाज फिल्म का गाना। इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत

0: किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
0: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का।

0: मेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस।
1: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
0: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
1: अच्छा,
0: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
1: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
0: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
1: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
1: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
0: बातें कर रहे हो दोनों?
1: कुछ नहीं,
0: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
0: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुबा चुबा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा, अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है।
1: वो

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। अब चलो
3: ये देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा

0: कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल,
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: तू समझ गई है?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: बता?
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
1: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी

0: दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोता अभी सुन रही थी NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया है।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं लीजिए, अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं उमेद सिंह सैनी।

0: श्रोता भी सुन रही थी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कार्यक्रम में आप सुन रही थी उम्मेद सिंह सैनी और उनके साथियों को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। शेखावाटी क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना के लिए आज राज्य के हरियाणा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर के समय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। 33,379 करोड़ रुपए की इस परियोजना से हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से राज्य के शेखावाटी इलाकों तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के शहरों और गांवों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी तथा कृषि कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन दोनों प्रदेशों के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण ही इस प्रोजेक्ट में प्रगति हुई है।
2: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखे, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से रुकी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की परस्पर सहयोग और भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहाँ राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारे सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। ये समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन और समग्र विकास से जुड़ी हुई थी। राज्यपाल ने आज जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से देश के सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया। प्रदेश में लगभग 43 दिनों के लंबे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से सभी सरकारी और निजी विद्यालय फिर से खुल गए हैं। भीषण गर्मी के कारण शिक्षा विभाग द्वारा इन छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ स्कूलों में नए विद्यार्थियों को जोड़ने और ड्रॉपआउट बच्चों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत शिक्षक वार्ड पंचों, सरपंचों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर जाएंगे। प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में भी अवकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों की चहल पहल शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के बाद आज से राजस्थान न्यायालय सहित राज्यभर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित जनसुनवाई फिर से शुरू हुई। अब न्यायालयों का कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई, नए प्रकरणों की पेशी और अन्य न्यायिक कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। जैसलमेर में पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूआईटी मूल सागर क्षेत्र में गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना शुरू करेगा। इस योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। यूआईटी को इस योजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर

0: आज सुबह एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना दूदू क्षेत्र के महला गांव के पास सुबह करीब 5 बजे हुई। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रही एक बस का एक्सल टूटने के कारण उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस खड्डे में पलट गई। पुलिस ने घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भिजवाया है और फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए राज्यभर से 370,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 280,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान कुल 75% उपस्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम घर आंगन सुनन हाली सगली श्रोता भणारो घणे मानसू स्वागत है। बेड़ो थारा आपरे कार्यक्रम घर आंगन मायने आज के ओ कार्यक्रम रे मायने एक घंटा ताणी मैं थारा साथ रहूंगी थारी बहन विनोद। तो स्वीकार करो मेरे कानी सू मोकला मोकला राम राम। और ई कार्यक्रम रे मायने भेनो आप घनी सारी बातचीत करांगा, कई विषय ही जगह के ऊपर आपस में विचार विमर्श करांगा, बातचीत करांगा और जानांगा के एक धैर्य है की चीज है कि जिके अपने अंदर हो तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़ी से बड़ी समस्या को समाधान जो है वह बहुत आसानी से कर सका। हाँ धीरज ही एक अँ को मन के मायने होने वालों गुण है जिके के माध्यम से आप हर परिस्थिति को सामना कर सका। हाँ मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन अगर आप धीरज से काम लेवा तो हर समस्या को समाधान आसानी से आप निकाल सका। हाँ दूसरी बात बहनों घबराहट बेचैनी एर हड़बड़ी में करेड़ो काम है जो को पेश को नहीं पड़ा करे है भी काम रे मायने कोई ना कोई गलती कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाए। इस वास्ते हर समस्या को समाधान करने ऊपर ली भी ने चोखी तरह जाना समझा एर बी के ऊपर विचार करा। जब धीरज बैठ के सोचांगा तो समस्या के मायने ही अपने समाधान मिल जागो। एक और बातचीत आप करांगा बहनों आपस में और बा करचा अपने बचपन की। देखो बचपन को नाम लेता ही अपने मुख मंडल पर एक चमक आने स्वाभाविक है और जब आप बात करा आप याद करा अपने बचपन ने तो देखो के करता टेम टेम की बात है। अपने बचपन के मायने सुविधा अलग ही माहौल अलग हो और आप बहुत खुले का मायने आराम से रहता। आज को टेम है जो को बदल रहे है लेकिन इन्हें बदलता जगह टेम रे मायने भी आपने टाबरा के बचपन के साथ अपनो बचपन जी सका। हाँ और अपने टाबरा ने अपने बचपन की यादा है जो कि बता सका। हाँ जिके सु एक तो टाबरा ने खुल के जीने रे मायने आसानी होगी। दूसरी बात के आज को तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग से बाहर ने एक खेल कूद की दुनिया है प्रकृति की दुनिया है बी की तरफ आपा अपने बच्चे ने लेके जा सका। हाँ ई कार्यक्रम के मायने आपा और भी चर्चा करांगा पर पहले सुनाइयो लोकगीत।

बेड़ो धैर्य और समझदारी सु हर समस्या को हल है जो को आपा काढ़ सका हाँ। जे कि बेड़ो परेशानियां है या आपने जो समस्या है वह हर कोई के जीवन में आती रहे हैं, पर व्यक्ति की हिम्मत और धीरज की परीक्षा भी आपा ने जदी हुए जद कोई परेशानी आवे कोई कठिनाई आवे। जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी या कोई भी कठिनाई समस्या इसी को नहीं जिक को कोई समाधान को निकले। तो हर समस्या को समाधान निकालने के लिए अपने एक घबराहट गुस्सो या जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और सही सोच और विवेक से जब अपा काम में लिया तो समस्या को समाधान है जो को बहुत आराम से हो सके है। बेड़ो जब अपा शांत मन

चांस है, कोई स्थिति ने समझने की कोशिश करा हाँ, तो ही आपां सही निर्णय ले पावांगा। और जब आपां सही निर्णय ले पावांगा, जब ही भी समस्या को हल भी निकलेगो, सब्र बनाए रखने से ही आपने बड़ी से बड़ी समस्या को समाधान काढ़ पावांगा। और समस्या में ही समाधान छिपेड़ो हुए है, अपन बचपन से सुनता आया हाँ कि हर समस्या का मायने भी को समाधान हुए है। जैसे कि आपा जब स्कूल में पढ़िया करता तो अपना गुरुजी कहता कि सवाल ने ध्यानो पढ़ोगा तो एको हल भी नहीं थाने इस सवाल में ही दिख जागो। और बहुत बार होते भी है यहाँ, जब आपा सवाल ने धीरे धीरे समझने की कोशिश करता तो बिगो समाधान भी निकले। तो वही बात अपने जीवन में भी लागू हुए है, जब आपने कोई समस्या आवे तो वे दौरान जब आपा समस्या ने समझने की कोशिश करा, जानने की कोशिश करा का आके कारण सो अपने जीवन में आई है, तो वे का हल भी अपने जीवन का मायने बहुत आसानी से ढूंढ पावांगा। ये वास्ते समस्या ने समझना जरूरी है, और समझ के सही दिशा में कदम जब बढ़ावांगा तो बिना सुलझाने में भी आसानी होगी। ये वास्ते कठिन समय में घबराने की बजाय संयम और बुद्धिमानी से काम लेना बहुत जरूरी है। ये वास्ते बहनों आपने कठिन समय का मायने धैर्य बना के रखना है, क्योंकि जब आप धैर्य बना के रखांगा तो सही निर्णय लेने की क्षमता जो है वह अपने अंदर उत्पन्न होगी। और सही निर्णय लेवांगा जब ही अपनी समस्या को सही समाधान भी होगा। एक और बात कर, नकारात्मक सोच से आप बच पावांगा, जय आप धैर्य और धीरज के साथ सब्र के साथ काम में लेवांगा। जब आप समस्या ने समझने की कोशिश करांगा, भी के ऊपर सही प्रकार से निर्णय लेवांगा, सोचांगा कि आके कारण से आई है तो, और नकारात्मकता है जो कि आपने से दूर होगी, क्योंकि सब्र के साथ जब सोचांगा तो अपना दिमाग है वो सही दिशा में काम करेगा, और सही दिशा में काम करेगा तो आप समस्या ने हल करने की ओर आगे बढ़ांगा। और जब समस्या का समाधान की तरफ अपन बढ़ने लग जाए वहां, तो नकारात्मकता है जो कि अपना आप अपने से दूर होने लग जाए है। कठिनाइयां का मायने अवसर ने आप बदलने की कोशिश भी कर सका। अगर आपने जीवन में कोई परेशानी आई है तो बिना आपा एक मौको समझा, एक अवसर समझा, आपा खुद ने साबित करने को, अपनी काबिलियत दिखाने को, और इन अवसर के रूप में काम में लेंगा तो आपा नया नया तरीका ढूंढांगा विश्व उभरने का, समस्या से बाहर न आने का। और जब नया तरीका ढूंढांगा तो अपने अंदर छिपेड़ी जो प्रतिभा है वह बाहर न आवेगी, और भी अवसर ने आपा भुनाने की कोशिश करांगा। यानी आपदा के मायने भी आपा अवसर तलाश लेंगा, और भी अवसर ने अपने जीवन में एक सीख की तरह आपा काम में लेवांगा। और आगे आगे जो अपनो जीवन आवेगो भी जीवन के मायने इसी समस्या जद भी आवेगी तो आपा भी ने बहुत आसानी से हल कर लेंगा। ये वास्ते समस्या का मन आपा एक अवसर के रूप में लेने की कोशिश करा, ताकि भी आपा ने बोझ नहीं लगे, भी के अंदर आपा दबके नहीं रहा। समस्या ने एक तो आपा टाला नहीं, जब भी कोई समस्या आवे, जब भी कोई परेशानी आवे तो बिना शांति पूर्वक हल करने की कोशिश में कदम बढ़ावा, ना कि अगर आज समस्या है तो आपा आज कर लेंगा, कल कर लेंगा, या फिर आगे आने वाले दिन में कर लेंगा। तो दिन प्रतिदिन आपा सोचता रहेगा, समय गुजरतो रहेगा और समस्या है जो कि विकराल होती जाएगी। कह करे है कि कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली दूर को नहीं भागे, भाई बात अपनी समस्या का मायने है। जब आपा समस्या ने नजरअंदाज करांगा तो वह दूर को नहीं हुए, समस्या को समाधान करांगा जद ही जीवन से आपने परेशानी है जो कि दूर होगी। अपने भीतर सकारात्मकता और विश्वास ने आपा बना के रखा। बनो एक बात आपन हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुश्किल दौर है या फिर कठिन समय है वो हमेशा को नहीं रहे, कोई भी परिस्थिति है वह एक सार को नहीं रहे। चाहे दुख का दिन हो, चाहे खुशी का दिन हो, संघर्ष का दिन हो या सफलता का दिन हो, कोई भी दिन है जो को निरंतर अपने जीवन में एक सार बने को नहीं रहे, वे में उतार चढ़ाव आता रहे। लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति हो वो हर समस्या पर हर समस्या का समाधान करके और हिम्मत के साथ सब्र के साथ आगे बढ़े तो हर समस्या पर विजय पा ही ले वह है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: बेटा अब बात करा अपने टावरा के साथ है अपनो बचपन साझा करने की। क्या अपना जो टावर है वे आज के युग के महीने पैदा होएड़ा या फिर थोड़ा बड़ा एल का टावर है जका तकनीकी से बहुत ज्यादा नजदीक है, क्योंकि वो युग ही तकनीकी को है और ये युग के मायने टाबर है जका तकनीकी उपकरण की और ज्यादा भागे हैं। जीवन है जो को बांको थोड़ो संकुचित है अपनी बजाय, क्योंकि ये अपरला टाइम के मायने बचपन है जो को अलग तरह से अपना जिया करता। आज के टाइम के मायने टाबरा ने भी तो खुलो माहौल मिले को नहीं, और एक और भी अपने परिवार का मायने समस्या आगी है कि पहली संयुक्त परिवार का मायने टाबर पढ़िया बढ़िया होया करता, आजकल बच्चा ने है जगह एकल परिवार है जगह देखने मिले है। तो जो संयुक्त परिवार का मायने टाबर की परवरिश होया करती, भी परवरिश का मायने और एकल परिवार में जो टाबर की परवरिश हुआ है भी में कई प्रकार को अंतर है जो को देखने मिले है। एक तो टाबर खाली आपका माता पिता का करने ही रहे बस वही जुड़ेड़ा व्यवहार देखे, दूसरो वो आपका भरे पूरे परिवार में रहे, संयुक्त परिवार में रहे तो बैठे बने कई प्रकार का व्यवहार है जका देखने मिले, कई प्रकार का रिश्ता वाको सम्मान और वाको आदर है जको देखने मिले, बड़ा की सीख मिले, बुजुर्गों को अनुभव मिले, और सागे खेलन हाला जका सहपाठी या फिर आपका जका भाई बहन है चचेरा ममेरा माँ के साथ बने एक अलग प्रकार को रिश्ते है जो को महसूस करने मिले है। पर आज को परिवार है जका थोड़ा बदल गया ही, और बदलते परिवार के मायने टावरा की जकी सोचने समझने की शक्ति है या फिर बाको व्यवहार करने को तरीको है बीर मायने भी बदलाव आयो है। मेनो जद आपा लोग सब अपने बचपन के अपने बच्चा के साथ अपने बचपन ने साझा करा हाँ तो बीसों के एक समझ बढ़े है टाबरा के मायने, और जका टाबर है वे आपके माता पिता दादा दादी और बाकी भी घर का जका बड़ा मिनक है बस आपके बचपन की बातें सुन के और कुछ सीखने की और अग्रसर होएगा, और वे भी जानेगा कि अपना जका पेरेंट्स हैं अपना माता पिता ही दादा दादी हैं वे भी कदे अपने दौर से गुजरे हा, कदे वे भी टाबर हा, और जब वे टाबर होया करता तो वे भी एक अलग तरह की मस्ती मौज के मायने आपको बचपन है जो को गुजारे हो।

तो टावरा ने एक तो आ चीज सीखने मिले है कि बचपन ने बोझ ने बना के बचपन ने पूरी तरह सु आनंद के साथ जियो जावे। बच्चा ने एक प्रेरणा मिलेगी खुल के जीने की और परिवार में अपनेपन बढ़ने की एक और वजह मिलेगी टावरा ने कि आपके परिवार के साथ आपके वहाँ के बचपन के साथ वे आपके बचपन ने भी एक तुलनात्मक रूप से वे जानने की कोशिश करेगा कि वहाँ के माता पिता को बचपन है वो क्या गुजरे हो और वहाँ को बचपन है वो कौन सी दिशा में जा रहे है। बहुत सी बार आपा अपने टाबरा की बात सुन सहमत को नहीं हुआ, बहुत सी बात टाबर है जगह अपनी बात सुन सहमत को नहीं हुए। मता के मायने मतभेद है जगह आता जाता रहे हैं लेकिन बाकी बीच में आपा जब अपने टाबरा ने अपने बचपन से जुड़ी बात बतावा तो टाबरा में एक अलग ही संस्कार है जो उत्पन्न हुएगो। साथ ही बच्चा के मायने एक आत्मविश्वास है जो को भी बढ़ेगो। टाबर है जगह खुल के आपके बड़ा के साथ बात कर पाऊंगा और बच्चा के साथ है आपनों जो को बचपन है वो फेर सु जीने के लिए आपा ने एक दुनिया का मायने आपा एक फेरू उतरांगा और आपा टाबरा के साथ मिल के वाका बचपन ने जीने की कोशिश करा। तो बेनो बात करा आपा आपने बचपन की तो आपा बचपन हो जो को आपनो बहुत ही आपने खुले का महीने बीत्या कर तो वो दौर एक अलग दौर हो भी दौर का महीने जिम्मेदारियां हैं जिकी अपना बुजुर्ग निभा लिया करता। टावर है जका मस्ती सु स्कूल भी जाता खेलता भी पेड़ा पर चढ़ता नदियां तालाब झरना पर नहाने जाया करता पर आज वो दौर है जो को कम हो गयो है। सुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा अपने टाबरा के ऊपर हावी हो गई है। अब टाबरा ने एक सेगमेंट भी एकला कौन छोड़ा और जगह सु के कि हर टाइम हर वक्त टाबरा के मायने एक भय रहे है और वह एकला रहने में डरे हैं। तो अपा टाबरा ने सिखावा कि मैं भी एकला खेला करता लेकिन सावधानी के साथ। तो टाबरा ने अपा बचपन की जिकी बाता है जो आपा कहानियां अपने दादी नानी गुनु सुनिया करता पण कहानियां के बारे में बतावा जका देसी खेल आपा खेल्या करता जके सु आपा हष्ट पुष्ट रहया करता वे चीजें आपा अपने टाबरा ने बतावा और वाने दिखावा कि थारो बचपन है जो को कंप्यूटर मोबाइल और आज वीडियो गेम खेलने का महीने उलझे है तो बैठे मारो बचपन है जो को एक जमीनी सतही तौर पर या सतही तौर पर खेलने में बीत्या कर तो कहानियां में सुन के वह अपा मनोरंजन है जो को करया करता। आज के टाबरा को आनंद लेने को तरीको अलग है लेकिन बात बचपन है जो को एक ही हुए है तो वो ही मन चंचलता और यही बात टाबरा के मन में भी है और यही चीज अपने मन में भी होया करती। जब आपा अपने बचपन की सगली बात खुल के टाबरा ने बताऊंगा और बिना कोई मिलावट के बिना कोई ही तामझाम करे जय आपा बचपन जियो हो बया ही टाबरा ने बतावा और बिकस बावजूद जब टावर आपके बचपन की और अपने बचपन की तुलना करेगा तो बाने भी लागेगो कि खेलनो कूदनो भी बहुत अच्छे होया कर तो इकलिए अपा अपने टाबरा के साथ जमीन पर बैठ के खानो खावा बाका सागे खेला हंसी मजाक करा बिना झिझक के बाकी छोटी छोटी जिकी खुशियां है बाने स्वीकार करा और बाने शाबाशी भी देवा जय कि बाकी बच्चा के छोटी छोटी खुशी हुए कि बारिश हुए तो भी कमाई ने नहाने की भीगने की माटी में खेलने की तो बेको हिस्सो अपा भी बना। टाबरा के साथ अपा बिना शर्त के खेला बच्चा के साथ बाका स्तर पर अपा आके जिका छोटा छोटा खेल है लुका छिपी को यो बोर्ड का गेम है गुड़िया को घर बनानो है इसे छोटा छोटा खेल जब अपा टाबरा का साथ खेलांगा बाका मन की बात समझने की कोशिश करांगा तो टाबर आपने सु ज्यादा नजदीक आओगो और मन की जिकी बात है वो ज्यादा अपने साथ साझा करेगो। इसके अलावा टाबर बेझिझक आपा ने कोई भी बात है जिकी बता देगो। रोजीना आपा साथ बैठ के खानो खावा तो दिन में कम से कम तो आपा एक बार टाबरा का सागा बैठ के खावा और खाने के दौरान ही वे विद्यालय में जो भी गतिविधियां हुई वहां के बारे में भी जान लिया के वहां मस्ती करी कितो वहां पढ़ाई करी कौन सी शरारत करी तो ये सब बात आपा जब छुटपुट में पूछांगा हंसी खुशी के मायने या फिर हंसी मजाक के रूप में पूछता रहूंगा तो टावर बिल्कुल सहज भाव से आपकी सगली बात बता देगो। भी कमाई ने अपन सुधार करने की गुंजाइश भी होगी कि कौन सा व्यवहार है जो को टावरा ने सुधारने की तरफ अपन लेके जानो चाहिए कौन सा ऐसा व्यवहार है जिसका टावरा से बचने की अपन सलाह देवा और कौन सा ऐसा व्यवहार है जिसका कि अपन तारीफ करा तो जद बच्चा की अपन तारीफ

करांगा, प्यार जतावांगा, तो बच्चे के मन में अपने प्रति एक अलग ही सम्मान है जो को उभर के आवेगो। हर छोटी बड़ी सफलता पर टाबरा ने खुल के माँ की तारीफ करा, गले लगावा और बाने आगे बढ़ने को हौसला भी देवा। प्रकृति के साथ जोड़ा छुट्टियां के अंत में रविवार ने जया कि आप पार्क में घुमाने ले जावा, पेड़ा के बारे में बतावा, बादलों की आकृतियां देखा और टाबरा के सागर मस्ती मस्ती में जो बादलों की आकृतियां बने हैं बने पिछाड़ने की कोशिश करा, जानवर बने हैं या कुछ और बने हैं। तो ये सब चीज़ें की है कि बचपन ने और बढ़ावा देने के लिए मासूमियत ने अपनाने की और एक अलग एक कदम है जो को आप बढ़ा सका। हाँ।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: तो बड़ा आपा बचपन का भाई ने जो खेल खेले हा, जो मस्तियां करी ही, वक के बारे में तो टाबरा ने बतावाई, साथ ही साथ आपा जिम्मेदारी भी उठाता, बी के बारे में भी आपा अपने टाबरा ने जरूर बतावा कि बी दौर में भी आपा ने माता पिता है जिका छोटा छोटा काम और जिम्मेदारियां दिया करता और कहानियां के माध्यम से आपा ने सीख भी मिला करती। छोटा हा बचपन हो भी टाइम आपा खूब सारा मेला देखा करता, मेला के साथ साथ जो छोटा नुक्कड़ नाटक है वह भी अपने जीवन का मायने आपा बहुत देखा हा। हाँ, नट को खेल है, नटनी को खेल है, मदारी और बंदरिया को खेल है, ये सब चीजा देख के और आपा बहुत कुछ सीखा करता, सर्कस देखने जाया करता और अपना जो सांस्कृतिक जीवन है बी के ऊपर एक अलग ही छाप है। अपना जो देश है वो यहाँ कह कर उत्सव प्रधान देश है, एक मायने हर महीने कम कोई ना कोई उत्सव है जो को जरूर मनायो जाए, धार्मिक सांस्कृतिक और बहुत सारी अपनी जो को ये मानवता से संबंधित चीजें हैं पहलू है वे बहुत होया करता और आपा बासु बहुत कुछ सीखा भी करता। सांस्कृतिक जो धरोहर है अपनी मेला उत्सव त्योहार आज सबसे आपा बहुत कुछ सीखे हो। आज भी मेला भरिया जा ही पर पहली की तरह है जिका मेला को नहीं भरे, आज के मेला को रूप बदल गयो, खेल कूद और झूला और मौज मस्ती तक ही मेला सीमित हो गया, पर पहली जो मेला होता बांका मायने बहुत प्रकार का आपा ने सीखने वाली चीजें होया करती, मेला में कुश्तियां होया करती, मेला का मायने आपा अपने पशुओं को व्यापार करया करता और अपना पहनावो वेशभूषा ये सगली चीजें है जिकी आपा ने कई प्रकार का रंग रंगीला जो उत्सव है त्योहार है बांक मायने अपनी संस्कृति है जिकी झलक के आती। तो संस्कृति से परिचित कराने के लिए आपने अपने बचपन की जिकी यादा है अपनी जो बता है वे अपने टाबरा ने समय समय पर आपा बतावता रहा तो अपना टाबर ई धरोवर ने समझेगा जानेगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो सांस्कृतिक धरोवर है इन्हें ट्रांसफर करने को या फिर हस्तांतरण करने को काम है जो को अपना टाबर है जिसका करेगा। बच्चा का साथ बितायो हर छोटा से छोटो या फिर यहाँ कहूँ कि कम से कम समय भी अपना आपसी जो रिश्ता है बने मजबूत बनाने को काम करे है। एक अच्छी नींव है जो कि पड़े है टाबरा कमाई ने, संस्कार है जिसका आप अपने टाबरा कमाई ने विकसित

कर सका, आपसी समझ के द्वारा, बातचीत के द्वारा। तो अपा अपने टाबरा के साथ जब अपनो बचपन मिलके जीवांगा, तो अपने जो बड़ोड़ा ही अभिभावक है वे कुछ देर के लिए आपकी जो को मानसिक चिंता है, परेशानियां है, बिसु दूर हो जाही और चेहरे के ऊपर एक नई चमक है जो कि साफ अपने दिखन लाग जाए है। तो जीवन के बोझिलपन से दूर होने के लिए भी अपा थोड़ी देर के लिए ही सही अपने टाबरा के साथ बचपन में जरूर लौट के जावा, और बचपन को आनंद है जो को अपने टाबरा के साथ जरूर लेवा।

खुद पर भरोसो और अपनी सोच ने लेके आपां जद लचीला रवांगा तो अपन सफलता तो मिलेगी ही। मानसिक शांति की भी आ सबसे बड़ी कुंजी है। जद भेणो आपां अपने निर्णय पर विश्वास करांगा तो आपां विपरीत परिस्थितियां का भय ने भी मजबूत बनाड़ा रवांगा। एक सागे ही अपनी जो सोच है वीर मायने लचीलोपन राखने से भी आपां नई चुनौतियां को सामनो कर पावांगा। एर जो नया परिवर्तन होएगा बान आसानी से स्वीकार भी कर पावांगा। यो जो दृष्टिकोण है वो आपाने समस्या का जा नया समाधान ही बान खोजने में और व्यक्तिगत विकास करने में मदद कर सी। खुद पर भरोसा रखने से अपने मायने आत्मविश्वास है जको बढ़े लो। सागे ही अपने मन में जो असफल होने को डर है वो भी कम हो जाएगो। अपा दूसरा की जो को नकारात्मक राय है भी सु बच पावांगा। जब अपा खुद पर भरोसा रखांगा अपनी सोच ने सही मानांगा और भी कमाई ने अगर अपाने कोई परिवर्तन करना पड़े तो वे भी स्वीकार करेंगा। तो दूसरा की जो नकारात्मक सोच है जी का अपाने भटकाने को काम करे हैं वे सो अपन बच पावांगा। हर पल बदलाव ने अपाने स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन अनिश्चित है भेनो, इस वास्ते नई परिस्थितियां में स्वयं ने ढालना जरूर आना चाहिए। हमेशा कुछ नयो सीखने की जो मानसिकता है वह आपने मन में जरूर होनी चाहिए जिसके सो आपा खुद रे मायने सुधार की गुंजाइश कर सका हाँ। और आपा अपने सकारात्मक जो पहलू है बिन प्रबल मान सका हाँ। तो वेनो सोच है जिकी आपने खुली रखनी चाहिए। एक खुली सोच रे मायने कहीं हुएगो के जो भी नया विचार आवेगा नई परिस्थितियां के अनुसार आपने नया निर्णय लेना पड़ेगा तो वह लेने में आपने मायने आसानी होगी। और परिस्थितियां है जो कि बदलती रहे है, समय है जो को बदलतो रहे है। बदलती परिस्थितियां के साथ साथ आपने खुद के मायने एक ईशो लचीलो व्यवहार है जो को जरूर अपना के रखना चाहिए। जो को नया परिवर्तन है जो को स्वीकार कर पावे। अपनो जीवन अलग हो अपने आने वाले टाबरा को जीवन है जो को अलग होवेगो। हर दौर है जो को एक नई चुनौती लेके आवे है। हर दौर का माइंड का जीवन का तौर तरीका जो है वह नया हुए रहने को जो एक अनुभव है वो आपनों अलग हो अपने टाबरा को अलग है अपना माता पिता को कुछ अलग होया कर तो जीवन है जो को एक यहाँ कह करे कि समस्या का समाधान को संगम है। जीवन है जो परिवर्तन अपनाने को नाम है। ये वास्ते नया परिवर्तन स्वीकार करा खो अपनी जो खुद की सोच है भी के ऊपर भरोसा रखा और सोच रहे मायने इतो लचीलोपन रखा कि आपा हर नई बात ने स्वीकार करने के लिए तत्पर रहा।

सात रस है लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम को बखत है वो पूरा होने में है बेणो। फिर मिलन तानी अवार के लिए देव सिख राम राम।

0: business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल

0: ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci

0: www.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया।

0: दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम पर श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी चूरू का प्रसारण। श्रोताओं, दिन के 2:30 बजे हैं, आज है सोमवार। शुरुआत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम मेलबॉक्स की। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुंज बिहारी का नमस्कार। श्रोताओं, आपके ईमेल्स हमें प्राप्त हो चुके हैं और जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया था कि आप हमें दिन में 11 बजे से 1 बजे तक अपने ईमेल्स भेजें। इस समय के दौरान जो ईमेल्स हमें मिले हैं उनको हम आज शामिल कर रहे हैं। पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है कटी पतंग और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। मिली जुली फरमाइश आप सभी की। मोताला बाजार से बबलू शेख वजीर सोहिल शेख का ईमेल हमें मिल गया है और विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी, ओम भैया का ईमेल भी हम शामिल कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। ये हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, शुभचंद्र बजाज कालका और बिट्टा बजाज। छत्रपति संभाजीनगर से हमारे श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश का ईमेल भी हमने शामिल किया है। ये हमारे श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान और उत्तम जमताड़े। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनका पूरा परिवार। तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने याद रख के तय समय पर हमें ईमेल किया। आपकी पसंद पर, आपके रेडियो सेट पर ये गीत कटी पतंग से, आवाज किशोर कुमार की।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना किशोर दा की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। अगला गीत लिया है, फिल्म का नाम है गोरा और काला। इस गीत को सुनने के लिए एक ख्वाहिशमंद है आप सब, मिली जुली फरमाइश आप सबकी। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी भी टिंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये हमारे श्रोता हैं मेरठ कैंट से, लिखते हैं दिग्दर्शन और कविता घोड़। आप श्रोता लिख रहे हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला चीनू आसमा, दीपक और अनुश्री। गांधी चौक बाड़मेर से हमारे श्रोता हैं बबलेश पंवार, डेनी और मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीपों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीपा। गांव फ्रांसिस, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का ईमेल भी हमने शामिल कर लिया है। आप श्रोता हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डोली बेबी पूजा तामोरिया। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु और इनका पूरा परिवार। खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और इनका परिवार। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और सभी का अभिनंदन हम बार बार करना चाहेंगे, क्योंकि श्रोता जब तक कार्यक्रमों में अपनी शिरकत यानी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते तब तक उस कार्यक्रम की रोचकता नहीं रहती। आप हमें ईमेल करते हैं, हर सप्ताह करते हैं और तय समय करते हैं यानी दिन में 11 बजे से 1 बजे तक। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से आपका अपना कार्यक्रम पेल बॉक्स कुंज बिहारी के साथ। अगला गीत हम ले रहे हैं, फिल्म का नाम है संगम, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा लिखते हैं, हमेरी कला झुंझुनू से, महेश जानू बहादुर बास झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा जिला झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बीदासर से लिखते हैं, और नई सड़क चूरू से राजानंद वाणी, रजत रोहित, केशव मुकुल, मनीष, सुमित साक्षी और किरण नंदवाणी, जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल गुदड़ी बाजार चूरू से लिखते हैं, राकेश कुमार दूधवा मीठा चूरू से, अरविंद खाड़िया लादड़िया चूरू से, और निशांत पुंडे, ओम प्रकाश, मानसी, चेतन, आप सभी हमारे श्रोता हैं गोंदिया महाराष्ट्र से। ये ईमेल हमें मिला है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा का। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का ईमेल भी हम शामिल कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मुरहेकर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का भी ईमेल हमने शामिल कर लिया है। आप श्रोता लिख रहे हैं, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्राजल राय, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीव्यम जैन का ईमेल भी हम शामिल कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश जैन और सुरेखा सैन, ये श्रोता हमें लिख रहे हैं, राजकोट से जगदीश जोशी, मंजुला बेन और हितेश कुमार जोशी, हेमा जोशी। तमाम श्रोताओं की पसंद को पूरा कर रहे हैं संगम फिल्म के इस गाने के साथ, और ये गीत हमारे श्रोताओं की पसंद होते हैं जो कुछ कुछ हमारी पसंद से भी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अब आपकी रेडियो सेट पर वो गीत जो शायद हर लिसनर, हर रेडियो प्रेमी, संगीत प्रेमी को पसंद आता है, कुर्बान फिल्म से। ये धुन हम सबको बीते दिनों की याद दिलाती है। इस गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशमंद आप सब, मिली जुली फरमाइश आप सबकी। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखीलाल वर्मा का ईमेल हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी और राजेश, राकेश और ऋषिता। वीरमगाम गुजरात से हमारे श्रोता हैं अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश कुमार भावसार, राकेश कुमार और इनका पूरा परिवार। ये हमारे श्रोता हैं मलाड मुंबई से प्रमिला जैन, दिव्या, पूनम जैन, सोनल, चेतना और इनका पूरा परिवार। सूरत सिटी से अल्पा जैन, अदिति, सीमा और राजेश जैन का ईमेल हम शामिल कर रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमी बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और ये ईमेल हमारे श्रोता हैं ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा।

पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का। आप श्रोता लिख रहे हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज मोहम्मद रिहान, समरीन, और ये है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी,

श्रोताओं, कुर्बान फिल्म का ये गीत आपने सुना और अब चलती चलती कार्यक्रम का अंतिम गीत भी आप तक पहुंचा देते हैं और फिल्म का नाम है अंदाज। अंदाज फिल्म के इस गीत के लिए मिली जुली फरमाइश आप सबकी। आप लिखते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और इनका पूरा परिवार। ये हमारे श्रोता हैं दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से। लिखते हैं मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद और मिफरा नवाज। ये ईमेल

में मिला है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। आप लिखते हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर से लिखते हैं शत्रुघ्न और नीनाजी स्वप्निल, बहुत सारे नाम इन्होंने लिख भेजे हैं। और आप श्रोता हैं रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लिखते हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और ये हमारे श्रोता हैं खुशी गोस्वामी। आप श्रोता लिख रहे हैं अहमदाबाद मंडी पंजाब से लिखते हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना और इनका पूरा परिवार, तमाम श्रोताओं का इस गाने के माध्यम से हम फरमाइश को पूरा कर रहे हैं।

श्रोताओं, इस गीत के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश है कि कल किसने देखा है आज को भरपूर जी लिया जाए। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत आभार एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से अनुमति दे रेडियो दोस्त कुंज बिहारी को। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रही थी कार्यक्रम मेलबॉक्स। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3 बजे हैं। आज की हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FMX 107 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है।

हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 एफएम, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां आज आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शालिनी। तो युववाणी से जुड़े तमाम साथियों को हमारा नमस्कार।

जी दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है युवाणी, और आज का हमारा खास सेगमेंट प्रेरणा स्रोत रहता है। दोस्तों, जीवन में कुछ बेहतर करने का सपना अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हमें हमारी लाइफ में अपनानी पड़ती है। और कहा जाता है कि एक अच्छी सोच जो होती है वो इंसान की दिशा बदल सकती है, और एक प्रेरणादायक व्यक्ति जो होता है वो पूरी पीढ़ी की दशा बदल सकता है। जीवन में हम सभी कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर खड़े रहे होते हैं जहां सारे रास्ते जो होते हैं वो धुंधले दिखाई देते हैं।

आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और ऐसी सिचुएशंस हमारी उम्मीदों को चुनौती देने लगती है। ऐसे समय में हमें जरूरत होती है एक प्रेरणा स्रोत की, एक ऐसी रोशनी की जो अंधेरों के बीच आगे बढ़ने का साहस दे। दोस्तों, प्रेरणा स्रोत जो हमारा सेगमेंट है वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम विचारों, संघर्षों, सफलताओं और अनुभवों के बारे में बात करते हैं और हमें ये चीज़ें सारी विश्वास भी दिलाती है कि कोई भी जो सपना है वो असंभव नहीं होता। यहाँ हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिन्होंने चुनौतियों को अवसर बनाया, असफलताओं को सीख में बदला और अपने कामों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। दोस्तों, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि उस जर्नी का नाम है जिसमें संघर्ष भी है, धैर्य, अनुशासन और कंटिन्यूस जो हमारे प्रयास हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। और यही हमारे खास सेगमेंट का भी संदेश रहता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आपके इरादे मजबूत हों तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। और अपने मन में दोस्तों हमेशा उन पॉजिटिव विचारों को आप बना के रखिए जो आपके साथ साथ समाज को भी सफल बनाते हैं। अगर आज हम बात करें कि हर व्यक्ति जो है वो सफल बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी पहचान बने, लोग उसका सम्मान करें और उसका जो जीवन है वो बेहतर हो और वो अपने परिवार या समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन एक सवाल बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे केवल हमारा ही नहीं बल्कि समाज का भी भला हो और हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। जी हाँ दोस्तों, आज किसी शख्सियत के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, समाज में एक अच्छी हमारी जो छाप है वो छोड़ी जा सकती है, एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़े इंसान की ज़रूरत होती है, किसी अधिकारी, उद्योगपति या कोई प्रसिद्ध ऐसा व्यक्ति ज़रूरी होता है जीवन में हमें प्रेरणा देने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि प्रेरणा देने के लिए प्रसिद्ध होना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, दूसरों की मदद करना और पॉजिटिव सोच रखना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। हर महान बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। जब एक व्यक्ति खुद को बेहतर बनाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो परिवार पर पड़ता है, परिवार का प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज का प्रभाव पूरे देश पर दिखाई देता है। और इसीलिए यदि हम समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि प्रेरणा जो है वो अगर हमारे अंदर शामिल है तो हम उस प्रेरणा को हम समाज में भी फैला सकते हैं और समाज से ही जो है वो पूरे देश को परिवर्तित कर सकती है। तो सबसे पहला काम जो है वो हम कर सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट का, यानी कि स्वयं का विकास। जो इंसान खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। और अगर हम रोज़ कुछ नया सीखने की आदत अगर बना लें, किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के विचार सुने, अपनी गलतियों से सीखें और अपने व्यक्तित्व को निखारें तो हम लगातार बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्योंकि जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं, अच्छे लोगों के विचार हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि इन विचारों को हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। और जितनी हम गलतियां अपने लाइफ में करते हैं उन सभी से हमें ये सीख भी लेनी चाहिए और उन लोगों को भी ये बताना चाहिए कि इस गलती से ये नुकसान जो है हमें लाइफ में हो सकता है। और इसी के साथ इन सब चीज़ों के मिलाप से ही हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को लगातार अगर हम अपने जीवन में बनाए रखते हैं तो एक बेहतर इंसान हम बन सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम लाइफ में खुद प्रेरणा स्रोत का काम कर सकते हैं अपने जीवन के लिए और सोसाइटी के लिए भी हम एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में लिए चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की और बने रही 100.7 FM पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवानी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है हमारी प्रेरणा स्रोत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जिंदगी में हम अपने लिए प्रेरणा स्रोत कैसे बन सकते हैं, सोसाइटी में और देश के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी एक ऐसी पहचान बने और हम जो है अपने आप एक प्रेरणा स्रोत का काम करें दूसरे इंसानों के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति जो है वो ज्ञान की शक्ति होती है, इसीलिए जीवन में कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। दुनिया जो है वो तेज़ी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स

और नए अवसर जो है वो हर दिन हमारे सामने आ रहे हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी रुक जाती है। इसीलिए चाहे अगर वो स्टूडेंट हो, युवा हो या फिर कोई वरिष्ठ नागरिक, सभी को सीखने की जो आदत है वो अपनी लाइफ में बनाए रखनी चाहिए। और इसके बाद आता है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि जो आपकी सकारात्मक सोच है वो केवल अच्छी बातें सोचने का नाम नहीं है, बल्कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान खोजने की एक क्षमता होती है। जीवन में समस्याएं सभी के सामने आती है, लेकिन कुछ लोग समस्याओं में अवसर खोज लेते हैं और कुछ लोग अवसरों में भी समस्याएं ढूंढते रहते हैं। जो इंसान सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है, वो खुद भी खुश रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी वही ऊर्जा, वही सपोर्ट जो है वो देता है। और समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा है अच्छा व्यवहार। कई बार हम सोचते हैं कि समाज सेवा के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मुस्कान, एक सम्मानजनक शब्द, किसी दुखी व्यक्ति को दिलासा देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना भी समाज सेवा का ही एक हिस्सा है। अच्छा व्यवहार लोगों की दिल जीत लेता है, तो उस अच्छे व्यवहार को आप अपने पास बनाए रखें। और इसी के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ अगर ईमानदारी हो तो उसे एक जीवन का आधार बना लेना चाहिए। आज के दौर में लोग शॉर्टकट सक्सेस की तलाश में रहते हैं, लेकिन स्थायी जो सफलता है वो हमेशा, हम जानते हैं, ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। अगर हम अपने काम को पूरी लगन के साथ करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो लोग हम पर विश्वास करते हैं और विश्वास जो होता है वो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होता है। और युवाओं के लिए अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। समय दोस्तों वो संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। जो इंसान अपने समय का सही इस्तेमाल करता है, सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, तो वो जीवन में आगे ही बढ़ता है। मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक जो मनोरंजन में हम घंटों बिताते हैं, उसके बजाय अगर हम अपने समय का कुछ हिस्सा अपने अपने करियर के लिए, कुछ सीखने के लिए और पढ़ने के लिए, व्यायाम करने और समाज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं उसमें लगाएं, तो हमारा जो जीवन है वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन सकता है। और साथ ही साथ डिसिप्लिन जो है वो हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। शासन केवल नियमों का पालन करना नहीं होता, बल्कि सही काम को सही समय पर करने की एक आदत होती है। और जो इंसान खुद अनुशासित रहता है, वह दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। और इन सब के बाद में अगर हम देखें तो पर्यावरण जो है उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन आज पूरी दुनिया की ज़रूरत है। पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना, ऐसे काम हैं जो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। एक पौधा लगाना भी एक महान काम हो सकता है, क्योंकि वो वर्षों तक लोगों को ऑक्सीजन और छाया प्रदान करता है। तो समाज को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण को बेहतर बनाना भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ हमें डिजिटल अवेयरनेस फैलाने का भी प्रयास करना चाहिए। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ गलत जानकारी, अफवाहें और साइबर फ्रॉड जैसी जितनी समस्याएं बढ़ रही है उनके नाम भी जो है वो कम पड़ जाते हैं। अगर हम लोगों को डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान जो है वो हमारी ओर से हो सकता है। कम से कम हम जितने भी जो गलत जानकारी है, अफवाह है, वो हमारी ओर से ना फैलाकर भी इस जो चीज़ है, डिजिटल अवेयरनेस है, उसमें हम अपना सामाजिक योगदान दे सकते हैं। और साथ ही साथ दयालुता का विशेष महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी किसी की छोटी सी मदद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और साथ ही साथ हम अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। तो समाज की शुरुआत देखी जाए तो परिवार से ही होती है। अगर परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण होता है तो समाज भी मजबूत बनता है। आज कई युवा जो है हम देखते हैं तनाव, अवसाद और निराशा का सामना कर रहे हैं, उसमें परिवार की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी देखी जा सकती है। क्योंकि जब परिवार साथ होता है, एकजुट होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है एक छोटी सी लगने लग जाती है।
ऐसे में अगर हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को भी अगर बढ़ावा दें, लोगों को

समझाएं कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी होता है। किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुने और उसको सहारा दे, उसको उसको उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ से निकलने के बारे में समझाएं, तो वो बहुत बड़ी मदद हो सकती है। यानी कि एक जो प्रेरणादायक इंसान होता है वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। वह समस्याओं की शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करता है। अगर हम इस चीज़ के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर रहते हैं, तो समाज में एक प्रेरणादायक इंसान की छवि जो है वो बना सकते हैं। यानी कि हम दूसरों को प्रेरित करने के लिए हमें अपनी असफलताओं को भी साझा करना ज़रूरी होता है। अक्सर हम देखते हैं कि सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन संघर्ष की कहानी जो है वो ज़्यादा प्रेरणा देती है। जब लोग देखते हैं कि किसी इंसान ने कठिनाइयों का सामना करके सफलता हासिल की है, तो उनमें भी आगे बढ़ने का साहस जो है वो होता है। एक प्रेरणादायक जीवन जीने के लिए हेल्थ फर्स्ट का सिद्धांत भी हमें अपनाना चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और स्वस्थ जो जीवन शैली है, न केवल हमें शारीरिक रूप से मजबूती देती है, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। स्वस्थ व्यक्ति ही समाज के लिए ज्यादा योगदान जो है वो दे सकता है। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि महानता का अर्थ केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि सच्ची महानता दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ने से आती है। अगर हमारे कारण किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी बच्चे को शिक्षा मिलती है, किसी ज़रूरतमंद को सहायता मिलती है, या किसी निराश इंसान की उम्मीद मिलती है, तो हमारा जीवन जो है वो वास्तव में सार्थक बन जाता है। इसीलिए स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ईमानदारी और अनुशासन के साथ जीवन जिए, दूसरों की हेल्प करें, पर्यावरण की रक्षा करें, शिक्षा को बढ़ावा दें और साथ ही साथ सकारात्मक सोच अपनाएं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। तो प्रोग्राम यूं ही जारी है, फिलहाल लिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास जो सेगमेंट है वो रहता है हमारी प्रेरणा स्रोत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जीवन में हम कुछ अगर बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के नहीं सार्थकता होती है वो भी इसके साथ ज़रूरी होती है, क्योंकि आज का समय कंपटीशन का समय है। हम जानते हैं हर जगह रेस लगी हुई है, कोई करियर में आगे निकलना चाहता है, कोई बिजनेस में, कोई सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता है, तो कोई वेल्थ और लग्जरी की दौड़ में शामिल है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सक्सेस जो है हासिल करो, टॉप पर पहुंचो, नंबर वन बनो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेस के बाद भी बहुत से लोग जो है वो अपने भीतर से खाली महसूस क्यों करते हैं? उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं होता है। असल में दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो नेम, फेम, मनी और पावर नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ सफलता जो है आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन सार्थकता जब होती है वो आपको आत्मसंतोष देती है। यानी कि जो भी हमारे पास चीज़ें उपलब्ध है उसमें अगर हम सेटिस्फेक्शन पा जाते हैं तो वो सबसे बड़ा मीनिंगफुल और पर्पसफुल हमारी लाइफ को बना देता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा घर है, लग्जरी कार है, बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर आपकी कार आपके कारण किसी का जीवन बेहतर नहीं हुआ, अगर आपकी मौजूदगी से किसी को प्रेरणा नहीं मिली, अगर आपके जाने के बाद लोग आपको केवल आपकी संपत्ति से याद करें, आपके व्यक्तित्व से नहीं, तो क्या ये जीवन वास्तव में महान कहलाएगा? आज समाज में सक्सेस को इतना बड़ा बना दिया गया है कि लोग उसके पीछे भागते भागते अपने वैल्यूज़, रिलेशनशिप्स और ह्यूमैनिटी तक को भूल जाते हैं। कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, कई लोग दूसरों के पीछे धकेलते हैं, कई लोग अपनी हैप्पीनेस तक को खो देते हैं, लेकिन उनका फोकस जो है वो केवल रिजल्ट पर होता है, पर्पस पर नहीं। दोस्तों, सार्थकता का अर्थ है कि आपका जो

जीवन है किसी उद्देश्य से जुड़ा हो, आप जो भी करें उसके केवल आपका ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो, आपके काम का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो समाज पर भी पड़े, आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम करे। सोचिए एक टीचर की इनकम जो है वो शायद किसी बड़े कॉरपोरेट जो है उसके जितनी नहीं होती है, लेकिन हजारों बच्चों का भविष्य बनता है। एक ऐसे करके बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम ले सकते हैं जहाँ कई लोगों की वजह से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। तो यही सार्थकता है कि आप अपने काम को कितने अच्छे ढंग से, कितने अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारी व्यक्तित्व है जिन्होंने केवल व्यक्तिगत जो सफलता है वो प्राप्त नहीं की है, बल्कि लाखों युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी दी है। आज लोग उन्हें उनकी उपलब्धियों से ज़्यादा उनके विचारों और उनके योगदान के लिए याद करते हैं। यही सार्थक जीवन की पहचान होती है। और आज सोशल मीडिया के दौर में लोग सक्सेस को बहुत सारे लाइक्स, फॉलोवर्स और व्यूज से मापने लगे हैं, लेकिन याद रखिए पॉपुलैरिटी और पर्पस दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। हजारों लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका जीवन सार्थक भी हो। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति चुपचाप समाज की सेवा कर रहा हो, शायद उसे बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन उसका जीवन जो है वो अत्यंत ही अर्थपूर्ण हो सकता है। और सार्थक जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि दोस्तों आप बहुत बड़े पद पर हो, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हो, लेकिन एक छोटा सा अच्छा काम भी आपके जीवन को मीनिंगफुल बना सकता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी को सही दिशा दिखाना, किसी की शिक्षा में योगदान देना, किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सारी चीज़ें सार्थकता के एग्जाम्पल्स हैं। युवाओं के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि करियर ज़रूरी है लेकिन कैरेक्टर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अचीवमेंट ज़रूरी है लेकिन इंटीग्रिटी उससे भी बड़ी चीज़ है। मनी ज़रूरी है लेकिन वैल्यूज़ जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका फोकस केवल सक्सेस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो फोकस है वो पर्पज़ पर भी होना चाहिए। तो अगर आपको फेलियर भी मिले तो वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ पे ना पड़े। सार्थकता हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं है, देने का नाम भी है। हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के बारे में भी सोचें तो हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं आसान भी हो सकता है। एक पेड़ को देखें तो वो अपने लिए फल नहीं खाता, एक नदी को अगर हम देखें तो वो अपने लिए पानी नहीं पीती, सूरज अपने लिए नहीं चमकता। प्रकृति का हर जो तत्व है वो हमें गिविंग की सीख देता है और यही सार्थकता का मूल सिद्धांत भी होता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल बनने के लिए हम चीज़ें अपनाते हैं, तो उसी के साथ साथ अगर हम रिस्पॉन्सिबल भी बने, कंपैशनेट भी बने, तो सफलता को और भी ज़्यादा हम अपने जीवन में ऊंचाई दे सकते हैं। तो जीवन में केवल सफलता के साथ साथ हम अपनी ग्रोथ, अचीवमेंट और जो भी ग्रेटिट्यूड होता है उसको भी अगर बनाए रखें, उसी के साथ साथ ह्यूमैनिटी को भी अपनाए रखें, तो बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और दूसरों के जीवन को भी हम प्रेरणा दे सकते हैं। और भी बातें करेंगे प्रोग्राम में, फिलहाल ये चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम युवाणी में आज के खास दिन के बारे में बात करें तो आज उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है, जो 29 जून को हर साल मनाया जाता है। और इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है वो दोस्तों दुनिया की उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनकी जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और विकास की संभावनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन विशेष रूप से उन देशों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में

एक है। विश्व की लगभग 40% जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है। इसके साथ ही विश्व की लगभग 80% जैव विविधता भी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। घने वर्षावन, मैग्रोव वन, प्रवाल भित्तियां और इसी के साथ अनेक दुर्लभ वनस्पति और जीव जो प्रजातियां हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पहचान है। ये जो दिवस है वो पहली बार 29 जून 2017 को बनाया गया था, क्योंकि इस तिथि का चयन इसीलिए किया गया क्योंकि 29 जून 2014 को स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थिति, उनकी उपलब्धियों और चुनौतियों का पूरा अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। और इस रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि आने वाले दशकों में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास का बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रित होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने अनेक चुनौतियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, समुद्र स्तर में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और गरीबी जैसी समस्याएं इन क्षेत्रों के सतत विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कई उष्णकटिबंधीय देशों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि चक्रवात, बाढ़ और सूखे का सामना भी करना पड़ता है, और इसीलिए इन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। इस दिवस के अवसर पर अलग अलग देशों में शैक्षणिक संस्थानों में, पर्यावरण संगठनों और कार्यशालाओं में जन जागरूकता अभियान और उसके साथ साथ शोध कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भारत भी एक महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पश्चिमी घाट, सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्र जो है वो समृद्ध जीव विविधता के केंद्र है। इन क्षेत्रों का संरक्षण न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के पर्यावरणीय संतुलन के लिए जरूरी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति और मानव विकास के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करके ही हम सतत विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। ये दिवस हमें पृथ्वी के इन अनमोल क्षेत्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और उन्हें संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, प्रोग्राम में और भी बातें करेंगे, फिलहाल लिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही घटना को देखकर दो लोग जो हैं वो अलग-अलग राय क्यों रखते हैं? इसका कारण अक्सर ज्ञान की कमी नहीं होता है, बल्कि उनके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। हर इंसान अपने अनुभवों की खिड़की से दुनिया को देखता है। जिस रास्ते पर हम चले हैं, जिन सिचुएशंस का सामना हमने किया है, जिन लोगों से हम मिले हैं, वही हमारे विचारों को आकार देते हैं। इसीलिए जब कोई इंसान हमसे अलग सोचता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हो सकता है उसने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखा हो। मान लीजिए, एक इंसान ने संघर्ष में जीवन बिताया है, उसके लिए मेहनत, धैर्य और अनुशासन जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। वही दूसरी ओर किसी इंसान ने अवसरों से भरा जीवन देखा है, तो उसकी सोच अलग हो सकती है। दोनों की बातें उनकी अपनी जर्नी का परिणाम है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन की जो शैली है वो अलग-अलग अनुभवों से उसको महसूस किया है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे जो विचार हैं वो और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। केवल उनकी अपनी जो सोच को सही मान लेना हमें सीमित कर देता है, लेकिन दूसरों के दृष्टिकोण को समझना हमें बेहतर इंसान बनाता है। याद रखिए दोस्तों, मतभेद जो होते हैं वो हमेशा बुरे नहीं होते हैं। कई बार यही मतभेद जो है हमें नई सीख देते हैं। अगर सभी लोग एक जैसा सोचते तो दुनिया में न नए विचार आते और ना ही विकास होता। इसीलिए अगली बार जब कोई आपसे अलग राय रखे, तो तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश ना कीजिए। एक पल रुकिए और सोचिए कि शायद उसकी बात के पीछे उसके जीवन का कोई अनुभव छिपा हो। हो सकता है उस अनुभव से आपको कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने अनुभवों की खिड़की से संसार को देखता है। मतभेद अक्सर अज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की अलग-अलग यात्राओं का परिणाम होते हैं।

जी दोस्तों, ये तो था आज का प्रोग्राम युववाणी और खास सेगमेंट हमारी प्रेरणा स्रोत। फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाजत दीजिए आपकी दोस्त शालिनी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के साथ उनका कार्यक्रम युवाणी, FM 110.7 मेगाहर्ट्ज प्राम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेषराही कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार।

शाम से उसकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। ये समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। तदुपरांत 6:30 मिनट पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। शाम 6:40 मिनट पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी और 6:45 मिनट पर आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

साथ ही चर्चा होगी खेती किसानी में महिलाओं के योगदान के बारे में। आपको बताए जाएंगे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के तरीके, साथ ही सुनवाए जाएंगे लोकगीत और लोक भजन।

शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। चर्चा होगी इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्यों के बारे में।

रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत में गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे News@9। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत और 9:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से खेल जगत, और 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सभा के अंत में रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

अभी आपने जाना कार्यक्रम विवरण FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: अगले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu presented gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Vashne, Lieutenant General Vikas Rohela, Lieutenant General Harvinder Singh Vandra, and Lieutenant General Mohinder Pal Singh were awarded Ati Vishisht Seva Medal. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of armed forces are also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi today said that his visit to Seychelles has been full of substantive outcomes that will boost India-Seychelles friendship. In a social media post, the Prime Minister said that during the past 50 years, the relationship between the two countries has been marked by deep trust and shared progress, while the next 50 years will be defined by innovation, sustainability and shared prosperity. He also expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, the government and people of Seychelles for their affection. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved the nearly 3-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to Rajasthan through 3 underground pipelines from the next month to October. A Delhi court today extended

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयः च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रयेभ्यः विलम्बितायाः यमुना जलविभाजन विवादस्य अद्य समाधानं जातम्। सर्वोच्च न्यायालयेन राममन्दिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन साम्प्रतिकाय दशमवर्गाय त्रिभाषानीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचनातन्त्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,000+ द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरण

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एमओए हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओए किया गया। आज नई दिल्ली में ये एमओए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुआ। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। एमओए पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के लिए करीब 3,900 करोड़ रुपए की लागत से हथिनी कुंड बैराज से चूरू तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी।
1: इस परियोजना

0: के अंतर्गत हथनीकुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दिन को भावनात्मक बताते हुए कहा कि ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि लाखों परिवारों की बरसों पुरानी आशाओं, विश्वास और संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के विकास, जल सुरक्षा और समृद्ध भविष्य का नया अध्याय लिखेगा। इससे जल्दी ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इस समझौते पर और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी।
2: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: शेखावाटी क्षेत्र की बरसों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में आज हुए एमओए से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में खुशी का माहौल है। लोगों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बड़ी राहत देने वाला बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीर जवानों और सशस्त्र बल कर्मियों को असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई जाबाजों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई इन सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्ट भी शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
3: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गाँव में हो, शहर में हो, सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक, वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहां बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रोक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉकवे भी उनके लिए बना है।
1: श्री बिरला ने सियाम सभागार में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने और नवाचार करने का आह्वान किया। राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन ने संसद भवन में इन्हें शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल है। राजस्थान से डॉ अलका सिंह ने भी आज शपथ ली। इस अवसर पर केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं।

0: सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं कक्षा में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आज दोपहर में ताला मोड़ के पास एक होटल में बन रहे एसटीपी प्लांट की दीवार गिरने से हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मौका मुआयना किया। मीडिया से बातचीत में श्री पटेल ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जाँच का विषय है और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के आमेर क्षेत्र में दीवार गिरने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। हालांकि मॉनसून के पहुंचने में हो रही देरी से अधिकतर हिस्सों में उमस का असर बना हुआ है। कुछ हिस्सों में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मॉनसूनी गतिविधियां पश्चिमी भागों के मुकाबले अधिक सक्रिय रह सकती है। अगले कुछ दिनों में अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। इसके लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। सरकार ने बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंध मजबूत किए हैं। देशभर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच

0: एमओए हुआ, इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले में इन दिनों जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को रोटावेटर अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को खेती की लागत कम करने और समय की बचत करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान भी शुरू हो गया है। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों की आयु के 1,87,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो बूथों के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष टीमों की तैनाती की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जागरूकता संगोष्ठियां और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आशा सहयोगिनी और एएनएम कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों का सर्वे कर रही है। परिवारों को ओआरएस और जिंक की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही माताओं को डायरिया से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य मानसून के दौरान बच्चों को डायरिया से सुरक्षित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर रैलियां और योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के अनुरूप लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक काम किए गए। विभिन्न स्थानों पर फार्म पौंड, रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन कार्यों का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और भूजल स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिले में उल्लेखनीय काम हुए। विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में भूजल खारा है वहां फार्म पौंड के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। इससे खेती और बागवानी कामों को लाभ मिल रहा है। किसान सोलर पंप और ड्रिप सिंचाई पद्धति का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे पानी की बचत हो रही है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डीग शहर में मालीपुरा रोड पर फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से घरों से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। इससे जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर भी जिले में अभियान चलाया जा रहा है। डीग पुलिस द्वारा विशेष ग्राम गोद योजना के तहत गाँव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले लोगों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी दी जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए डीग शहर में इको कूलिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आमजन को विश्राम, शीतल पेयजल और ओआरएस की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों में प्राकृतिक वेंटिलेशन और सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। बीते दिनों जिले में मौसम में बदलाव देखने को

0: मिला। हाल ही में बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर तेज हवाएं और वर्षा भी दर्ज की गई। बारिश से किसानों में उत्साह का माहौल है। उनका मानना है कि इससे खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन को लाभ मिलेगा। इसी के साथ डीग जिले की चिट्ठी यहीं समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली माए राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौता 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली माए वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी और दिखनाद आथोनी मानसून रे प्रदेश माए आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल जुलाई रा पहला हफ्ता माए पुगन रा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह। अरबे समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना ने बनावण और लागू करण ने लेर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA करीजियो। आज नई दिल्ली में ओ MOA राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बीच वियो। मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रिया। MOA माथे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दस्तखत करया। ई मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कयो के करार रे तहत मानसून रे दौरान राजस्थान रा हकरो पानी भूमिगत पाइपलाइन री मार्फत हथिनी कुंड बेराज सप्लाई करियो जायला। परियोजना री बनाई चुनाई सारू कोई 3,900 करोड़ रुपया री लागत हथिनी कुंड बेराज चूरू ताई पाइपलाइन बिछाई जायला। एणु पीवण रा पानी रे साथ ही पाणत सारू पानी री सुविधा मिलेला।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बेराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: मुख्यमंत्री श्री शर्मा इस दिन ने भावनात्मक बतावता कहो कि वो फगत एक करार नहीं है बल्कि लाखों पिरवाना रे साल पुरानी आस विश्वास और संघर्ष री जीत है। वणा कहो कि वो ऐतिहासिक कदम राजस्थान रा विकास पानी री हिफाजत और समृद्ध भविष्य रो नुओ पाठ लिखेला। एणु बेगाई जमी माथे काम शुरू वह जायला। ई करार माथे और जानकारी दे रिया है मारा खबर नवीस जितेंद्र द्विवेदी।
3: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: शेखावाटी हलकारी बरसा पुरानी पीवण रा पानी री समस्या रा निपटारा कानी आज वियो MOA रे पछे सीकर चूरू और झुंझुनू जिला में खुशी रो माहौल है। लोगा इन महत्वाकांक्षी परियोजना ने मोटी राहत देवन वाली बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रक्षा अलंकरण जलसा रा दूजा चरण में वीर जवाना और सशस्त्र बल कर्मिया ने असाधारण वीरता साहस और 28 सेवाओं सारू इनाम दिया। राष्ट्रपति भवन में विया ई जलसा में मातृभूमि री हिफाजत में ठावो बलिदान देवन वाला कई वीरा ने मरण रे पछे सम्मानित करी जिया। ई मौके उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलारा ठावा एहलकारी मौजूद रिया। वो सम्मान देश री आतंकवाद उग्रवाद और सरहदी हल्का में चुनौतियां रे खिलाफ बरोबर लड़ाई ने दर्शावे है। साथ ही विमान

नन समुद्री अभियाना और मानवीय मेसनामाए दिखाई जी असाधारण बहादुरी ने मान्यता दी जावे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में न्यारा न्यारा खेल सुविधाओं रो लोकार्पण करियो। कोई 4.5 करोड़ रुपया लागतों विकसित करी जी आ सुविधा में सिंथेटिक

0: चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक, वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है। लेकिन यहां बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है।
1: श्री बिरला श्याम सभागार माए प्राकृतिक खेती माते वी राज्य थर्री कार्यशाला माए भाषण करियो। वणा काश्तकारों प्राकृतिक और जैविक खेती ने अपनावण और नवाचार करने की अरज करी। राज्यसभा रा 8 नुआ चुनिजा सदस्य आज नई दिल्ली माए शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा रा सभापति सी पी राधाकृष्णन संसद भवन माए आने शपथ दिराई। आ सदस्य माए कर्नाटक कांग्रेस पार्टी रा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भेड़ा है। राजस्थान डॉक्टर अलका सिंह ही आज शपथ ली। ई मौके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ठावा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही मौजूद रिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज त्रिभाषा नीति माथे दिशा निर्देश काढ़िया। बोर्ड कहो के कक्षा दसवीं रा अबारा बेस ने नवी भाषा नीति री पालना नहीं करनी वेला। बोर्ड ओई कहो के सातवीं आठवीं और नवी कक्षा माए पढ़ रिया पढ़ेसरा ने ही दसवीं कक्षा माए पुगण माथे तीजी भाषा माए बोर्ड परीक्षा देवन री जरूरत नहीं वेला। बोर्ड कहो के वाने एक बत्ती भारतीय मातृभाषा माए पढ़ाई करता आपरी विदेशी भाषा ने चालती राखण री मंजूरी वेला। तीसवा राज्य थर्रो भामाशाह सम्मान जलसो आज जयपुर माए राखीजियो। बिड़ला सभागार में आविया ई जलसा माए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा जगत रा 276 दानदातावां ए प्रेरकां रो सम्मान करियो। जलसा माए बोलता श्री बिड़ला दानदातावां री सराहना करता कहो के ओ समाज रे प्रति उत्तरदायित्व और सेवा रो प्रतीक है। इणु हजारों पड़ेसरा रा सपना पूरा करण माए मदद मिले है। केंद्र सरकार देश माए स्वास्थ्य प्रणाली ने घनी मजबूत करी है। इस आरू करड़ी कोशिश करी जी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहो के सरकार पहला दूजा और तीजा थरे स्वास्थ्य सेवाओं रो पसारो करियो है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली माए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रा सम्मेलन माए बोल रहा हा। वणा कहो के रहवासियां और स्वास्थ्य प्रणाली रे बीचे मेलू पहला बिंदु रा रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मिंदर तर्पित करी जिया है। सरकार चोखा इलासारू प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं रे बीचे तालमेल मजबूत करियो है। देश भर में 23 नुआ एम्स और खास तौरू कम सुविधा वाला और पिछड़ा जिला में 157 बत्ती मेडिकल कॉलेज की स्थापना रे साथ ही तीजा थर्री स्वास्थ्य सेवाओं ने मजबूत करिया है। जयपुर रा आमेर हल्का में एक दीवार ढह जावणु 3 मजूरा री मौत वेगी। ए 3 लोग घायल व्या। घायला ने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराई जा है। हादसो आज दोपहरा ताला मोड़ कने एक होटल में विया। एसटीपी प्लांटरी दीवार पड़ जावणु वियो। सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासन कानियों राहत और बचाव रा काम शुरू करी जा। जिला प्रभारी मंत्री जोकाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक मौका रो मुआयनो करियो। मीडिया साथे बदल में श्री पटेल हादसा ने दुखदायी बतावता कहो कि इनरी विगतवार जांच करार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जायला।
2: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरत जाएगी और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा आमेर हल्का माए दीवार ढह जावणु हुआ हादसा रे माथे गहरो शोक जतायो है। और अब मौसम। राज्य माए दिखणाद आथुणी मानसून आवण सारू परिस्थितियां बरोबर है। फिर वही मानसून रे आवण माए वी देरी घणकरा हल्का माए उमस रो असर बण्योड़ो है। कुछ ऐसा माए मानसून पेलेरी गतिविधियां बण्योड़ी है। मौसम महकमा मुजब अगुणी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां दिखनाद हल्कारे मुकाबले बत्ती सक्रिय वह सके है। आवता कुछ दिना माए न्यारा न्यारा हल्का माए गरज चमक और तेज बायरा रे साथे हल्की मझला दर्जारी बरसात।

0: दौर चाल सके है। दिखनाद अगुणी और अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए 2 जुलाई बिरखरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी होवर और 2-5 जुलाई रे बीचे अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए बिरखरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी री आस है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो कि ई दौरान कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बिरखा वह सके है।
1: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42-44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: देश भर में आज संत कबीरदास की जयंती मनाई जावे। वे भक्ति कालरा महान संत और कवि हा, वना जीवन भर सामाजिक बुराइयां अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ आवाज उठाई। वारा दुआ आज ही सही जीवन जीवन रो मार्ग दिखावे है। कबीर जयंती मौके आज पाली माय शोभा यात्रा निकाली जी। नबे आखिर माय खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली माय राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौता 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली माय वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी और दिखनाद आथुणी मानसून रे प्रदेश माय आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल जुलाई रा पहला हफ्ता माय पुगन रा आसार। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनाला सगला किसान भाई बहना ने भाई तेजे कानिशु
2: और भाई अरविंद कानिशु मोकला मोकला
1: राम राम, राम। राम राम अरविंद भैया, राम राम,
2: राम राम, राम राम किसान भैया।
1: तो आज की है के पहली तो बात नहीं कर सियांगा भी आजकल अपन ई वक्त में यानी ई सप्ताह अपन के काम करना है। तो अब तो अरविंद भैया के आपने कट्ठे बिजाई होगी, कट्ठे बाकी है भाई, छंटा छिड़को जैठे सावड़ ताबा आ गयो तो बटत बिजाई होगी खरीफ की, और कई आगे कम छंटा रहेगी, थोड़ा सो आलस कर गया बटे हुई को नहीं। तो देसी बाजरी ही बात तो पहली चोटी अपन चौप देनी चाहिए, चार आंगन पांच आंगन छांट है ना। तो मानसून पहले की जगह बरसात है, बिग मान जो जाड़ो लाग जाने वो फिर आगे जे मानसून की बरसात

0: छिड़की आओ ने बांग मैंने नाको प्या दे अरतावली सी बड़े भी कुंदे सी बाले
1: भाई जकी जे ठाली छंटो छिड़को कही आगे पंती आगे और बंक है जो को जे ठाली जकी बाजरी है बा देखो अबारे से चाट करे और बे किसान बहन भाई जका तो के खेत के मैंने
0: निनान के
1: लाग गया और घनकरा किसान बहन भाई जका के दिन के आथन के आपको निनान है जो को काट भी लियो और जटे छंटो छिड़को पांती नहीं आयो बटे देखो के अब लेरला जगह दिन गए हाँ दिनांग मैं इन कई जगह अपना आसे पास है छंटो छिड़को हो और किसान बहन भाई जगह आपकी बिजाई करी और पछेती जी की बिजाई जी की बोला आपा भी मैं गुआ राजा तो वो कई किसान बहन भाई जिका बीज दियो और कई है जो को उड़ीक कर रहे हैं लेकिन किसान बहन भाई जिका पूरी सावा चेती के सगे और जिका बालियो जिका तो बालियो नहीं उड़ीक करन लाग रहे
0: भाई है के जिथे पांच आंगण चार आंगण आलेडी हो गयो कटे सात आठ दस आंगण आलेडी हो गयो ने बटे बिजाई को हैर बिजाई जगह नहीं करी है भाई ये सोचे कि भाई अपन कोई पछेतो मोट बाणो है पछेतो गुआर बाणो है पछेतो मूंग बाणो है तो बे की है के एक तो कई तो आया डिकन लग जाए क्योंकि घासड़ो उपड़िया हुआ है घास उपड़िया हुआ के पार्टी करके फिर बीज दिया निनान कम हो किसान भाई देखो एक तो ठावड़ी सी बात आप बतानी चाहो कि कई किसान भाई जगह घास की दवाई छिड़के खरपतवार नाशी जो खरपात वो जो रसायन है ने वो खराब हुआ जमीन खातर क्योंकि उगतो घास जे खत्म हो जाएगो तो भीम के अपनी जमीन के अंदर कई बांध का घासा को बीज हुआ है वह वक्त वक्त पर आपके अनुकूलन के हिसाब से वो घास उग गए और बीन के बीज खिंडे पहले बिन आप खत्म कर देंगे तो बीन को बीज वो हमेशा के लिए अपनी जमीन खत्म हो जाएगा तो वो काम नहीं करना भाई निनाणु के डरनो है जे आप कल्टियों या हड़ों जो खेत बाय है तो निनाणु को कोई जोर को नहीं आवे और फिर अरविंद भाया के अगेती खेती होने पहले तो क्या करता के एक लिए हड़ों मोटा मोटा कूट काटता जेठ की बाजरी बीजता ने तो मोटा मोटा कूट काटता तो कश्यो का सड़ाट उठतो निनाण को बेरो कौन पड़तो तो ब्यू क्यों तो कि एक तो नाज की जड़ जम जाती एक छोटे सूर्यन द्यास्ती को नहीं होती कणी मारगी को करगी और पहले तो झांदली चाल लागया करती एक एक बनेगी डेढ़ डेढ़ बनेगी दो दो मना को ना को काट देती अर भाई जाड़ा खड़ा रहता अति से अमरता पचन जिद कद भी छांटो छिड़को हो तो फिर भाई अड़ा टूट तो मांगो
1: भाई खरपतवार के लिए अगर जे आप कठों भी कोई भी तरीके की दुआई अगर जे आप अपने खेत के मैं छिड़क रहा तो आप अपने खेत की जी की माटी है जकी ने बीमार कर रहा और भी के सगे सगे भाई आप बावा जके दिन ही अगर जे किसान मैन भाई जिका के आजकल ओ मार्केट है जिको के आवी हो गयो खेती के ऊपर बहुत ज्यादा तो आप अगर जे बीज लेने जावा भी टेम ही है जिको बीज आलो है जो कोई पचास तरीके की दवाई है जो पहले हूं बता दे तो कोई न कोई किसान है जो कठन कटे भी मार्केट की जाल के मायने
0: उलझ जाए
1: तो अपन है जो ई मार्केट ने अभी को नहीं होने देनो है और आपने खेत की जो की माटी है जिकी ना अगर जी आप सही नहीं रखांगा भाई आप निनान काटा तो बिम के जो घास हो है वो आपने पशुओं के लिए काम आ जा
0: बिल्कुल
1: और कोई खेत में भी अगर जे रहे तो वो ऐज को हरी खात ऐज को आराम हो चौकी खात ऐज को बन जा तो आपने जी की खेत की माटी है बिंग उरुरा शक्ति जी की है ने वह बरकरार रहे
0: बिल्कुल
1: और आपा अगर जे जड़वालिया को खेत में नहीं होगो तो एकदम कोरा ऐज को होगा तो बाकी कोरी जमीन है जिकी घातक हुआ है
0: बिक मा कोई खाद खूद को कण तो रह को नहीं क्योंकि आपने जमीन के अंदर घास फूस की खाद बनाए जिकी मृदा है ने जिकी उपजाऊ ऊपर ली जिकी माटी है तो वह घास फूस तैयार हुआ है घास उगे बिना आप काट दें या नहीं काटा तो वो अपना आप गल के भी वापस मिल जाए।

0: और बिल्कुल बारीक बारीक कण जो है वो रेत का कणा के बीच में घुस जा, वो पानी डांटने की कोशिश करे और वो ही जो कि नाज या कोई भी पौधो है भी जड़ ने पोषण दे।
1: भाई आप देखा के खेत के महीने चौकी जंटी हो और बिंगो लूंग है डाली पड़ी बोक रही भाई जड़े तो भी जंटी के नीचे नीचे है जो को आप कदी जागी देख लियो निर्वाड़ो नाज है जो को रहे।
0: हाँ।
1: तो समझने के लिए अपा अगर जी आपने खेत के महीने निनान काट की
0: हाँ।
1: और घास है जो को तो चोखो पशुओं खातर लिया और जे खेत के महीन भी आप रड़ावा भी ने तो देखो वो खात है जी की तैयार हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो अपन इन तरीके के जो बाजार का जगह चीज ही बंक जाड़ में नहीं आनो है और भी न समझनो है कि आपा भाई पहले दिन ही खेत के महीने है जो को कीटनाशक छिड़कन लग जावांगा और लास्ट टाइम तानी है जो को छिड़का तो आपनी जी की फसल जी की बैठी है बा तो खराब हो जी की वही है।
0: बिल्कुल।
1: क्यों बिंग माइन कोई न कोई रूप के माइन जहर जा और वो जहर है जो को फेरे इंसान ने खुद के भी है जो को भाई आप खावाई तो नाज के माइन भी है जो को पहली वाली सी ताकत कौन रही क्यों कौन रही यही चीजा ही का आप ज्ञान भी ना गो देखू देखे और नहीं समझे ना समझी के मायने और मूर्खता करा। तो आपने इस तरीके की मूर्खता है जो को नहीं करनी है।
0: आपने क्या करता कि पहली वही काम हो के या तो खुद हाथों बिजाई करता है ना मकै कर खेती धनिया खेती तो घर को आदमी मुखिया जो को हों तो वो आपके हाथों बिजाई करते हो जो को खेती सारे दिन रहते हो। फिर दूसरी बात वो खेती करतो करतो मेरे बाद में जब मशीनीकरण हो गया तो यह सोचता कि भाई मशीन के ऊपर मैं खुद बैठ के मेरे छिड़को दूँ या कल्टी वगैरह हूँ जब आऊँ तो खुद बैठ के बाहूँ खुद करूँ तो खुद के हिसाबों बीज तैयार करनो खुद के हिसाबों बीज को बीजनो ए क्यों हो गए खुद को आत्मविश्वास बैठ दो और वो ही देखो जो को बीज है ने बीज पेड़ पौधा घास ए सारा चीज ए भी जीवन थी हुए है धनी ने भी जाने कोई न कोई तरीको जब को आदमी रोज की खेत में जाए तो भी को आ मान के चलो कि खेत को पौधो पौधो भी को जानकार है हर चीज जाने बिना तो अपन के गए जहाँ खेत में गए को नहीं हर कोई ने कह दिया तू बीज दे और कर दे तो बिशो फिर वो भी हिसाब किताब बैठक
1: भाई खेती है जो कि खुद जीते धूल के महीने नहीं होना बीते खेती है जो कि कोनी है। आप देखा के भाई कोई न बता दिया और वो कर लेगो बी के महीने देखो के क्यों तो खेती है जो आजकल भाई जमीना कम होगी भाई बंटू आ रहे के महीने और किसान बहन भाई जगह भी के टाबरा को और को आपका जगह घर परिवार का जगह काम ही बांगे माइन गठे नौकरी पेशो भी करें तो नाके सिर भी रहना पड़े।
0: बिल्कुल।
1: तो घर का जगह जितना भी सदस्य ही वे सगला सदस्य अगर जे थोड़ो थोड़ो हाथ बटावे तो आपकी खुद की खेती है जो को खुद करे तो देखो भी की ओट को नहीं हो।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि किसान बहन भाई जगह दिन क्यों लेके आथन गे तनी छठ मारू मने खेत के माइन रहे और तेज की बात करी के भाई एक एक पौधो है ने वो के पौधा है जिकी और किसान की जानकार हो है।
0: बिल्कुल।
1: और आप देखा के जगह दिन के जा आतन के तनी है जो खेत के माइन रहे और वे खेत के चारू मेर जब शिवा के फिरकी आवे तो कद भी कोई भी तरीके की चीज हो ने बा किसान मैन भाई जगह पट दिन सी बाप जाए।
0: बिल्कुल।
1: के भाई अटसी के पत्ता पीला हुआ लग गया के कारण है कोई रोग को है तो वो किसान है जो को आसानी तुरंत और समझ जाए।
0: हाँ,
1: तो आप खुद है जो को जितना ज्यादा भाई उसके घर का के मैं जितना सदस्य हुए पर थोड़ा बहुत हाथ बटावे तो वो काम है जो को आसानी हो
0: भाई इंक मैन आई है कि भाई एक काम तो अपना हो गयो दूसरी बात आओगी कि जिके किसान भाइया अबार खेती बाड़ी में बिजाई नहीं करी है तो भाई अगर घास

ऊपर रहे तो पार्टी करवा दो और बी के अलावा छड़ी छिपड़े डब लगा दो, क्योंकि रोज की आंधी उर्डो आवे, फांफड़ डालो में आवे। और एक पेड़ पौधा है जका के भाई खास तौर से जांटी रोईड़ा नीम अण का पेड़ पौधा है ने, तो बाकी जड़िया के मायने पेड़ी के सारे की क्यों दरडिया कर दो पांच चार कशी का जो कह के पेड़ के ऊपर आने वाला पानी है ने जो तिसल के नाके नहीं जा बी जड़िया के मां सीधो चले जा। और एक पेड़ के कोई कीड़ो कैडो लागने की संभावना कोई नहीं रहे। वो काम आप कर सका बी के अलावा अपन पानी का जगह ठाव है अपना कुंड है कोई आस पास नाडी है जोड़ो है तो वहां को भी आप देखा थोड़ा बहुत, क्योंकि पानी का साधन है बहुत जरूरी है। अब जी हाँ भी मैं बरसेंगा तो आपने पानी भेड़ो करना पड़ेगा कुंड में जोड़े में डिग्गी में है ना, तो आँख की साफ सफाई आँख को काम धाम अपन देख लेना चीजें खास तौर से तो ऐ आपने करने वाला काम है जिकांगे नाज बिलान खंड को हो गए बान निनाणियों अबार लाग जानो चीजें, क्योंकि छोटे नाज में निनाण का डेढ़ो है ना बिगी होट को नहीं हो, क्योंकि वो ऊपर की फिरे पहले आप निनाण काट के नक्की कर दें एक बार निराई गुड़ाई जद हो जाए ना तो बा नाज के पा लाग जाए। तो ऐ अपना अबार का करने वाला काम है। अब आप एक मोहन राम चौधरी की आवाज में गायडो ओ लोक भजन सुना था।

तो अभी थे वो लोक भजन सुने मोहन राम चौधरी की आवाज में गाइडो। अब अरविंद भाया बातड़ी एक बहुत थावड़ी है कि अपा खेती किसानी तो करा लेकिन ए के मायने आपने एक बहुत बड़ो योगदान जो है वो किसान महिलाओं को है। तो वह खेती के सागे सागे पशुपालन और घर को पालन भी करें, घर की सारी जिम्मेदारियां सारो काम।

0: धाम, पशुओं को काम, सागे सागे खेती को काम, तो योगदान तो तकड़ो है ही के।
1: भाई खेती और खेतियों संबंधित जीता भी काम धंधा ही ने, बस सारा काम आ गया। मैंने महिला को बहुत बड़ो योगदान हुआ है। वह देखो के खेत में भी जाएंगी, घर भी काम करेंगी, घर के हर सदस्य के सगे सगे वे घर के मैंने जीता भी पशुधन ने बा सारा को ख्याल एज को रखे। और भाई वे मूक प्राणी जका ही ने बाकी भाषा है जो वही समझे के कद बन पानी की जरूरत है, कद बन बांटे की जरूरत है, कद बन है जो को दूसरे ठान बनो है। वह सारी जकी दिन क्यों लेके आथन के तनी देर रात तक को जो को काम है ने वो महिला है जो को बखूबी निभावे। और बढ़ चढ़ की भाई खेत के माइन भी काम करें, घरां भी काम करें, और खेती और खेतियों संबंधित जिका और काम धंधा ही बंक के माइन भी बही जिकी आपको हाथ है जिको बंटावे।
0: बिल्कुल।
1: और देखा आपा के भाई बे बिना थके बिना हरे और दिन क्यों लेके आथन गे तानी हर काम है जिको बाकी नजर में हुए।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक बात और है कि अब धीरे धीरे महिला शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आयो और महिला शिक्षा जो की है वह बहुत ज्यादा हुई। इनके साथ साथ महिलाओं को योगदान अन्य क्षेत्र में भी हुयो, नौकरी पेशा में बड़ी बड़ी पोस्टों पर डॉक्टर इंजीनियर मैनेजर वगैरह कमा भी। लेकिन आपनों जो को परंपरागत काम है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है, खास तौर से स्वास्थ्य के लिए भी। भाई आपने के महिला चाहे डॉक्टर बन जाओ चाहे कुछ कर जाओ, लेकिन बा जब तक आपको परंपरागत काम नहीं कर सकते जब तक भी के जीव में शांति को नहीं है। जबकि महिलाओं ने नौकरी पेशा के साथ साथ आपको पूरा काम आवे, चाहे वो घर को हुए, पशुओं को हुए, खेती को हुए, तो बांको की एक अलग ही वो एक जीवन को महत्व है, हैं? और बांको आनंद भी मन भी चीज में ज्यादा आवे। कि आपने खास तौर से एक किसान परिवार के अंदर कोई भी आदमी से नहीं होना चाहिए बिन कोई चीज आंती नहीं हुए, कभी खेती को काम क्या करना है, निनाण क्या काटना है, कशियों क्या पकड़ना है, दंतियों क्या पकड़ना है, खुरपी को के काम है, कशी को के काम है, बाढ़ भेंट को क्या हुए, पूड़ो क्या बने जा, जेठ क्या गाली जा, है नाजपात काटने को के काम धाम है। भाई मशीन नहीं होता, आता हूँ पहले नाज काटता है, मोट मूंग काटता है, गुआर की काटता है, आता हूँ कूट के तो काटता आगे
1: सही है।
0: तो ए सगड़ा काम जो दाव ये पशुओं का काम है, गोबर पोटो है, थेपड़ी थापनी है, भोंगरा भरना है, दूध काटनो है, पशु बांटो देनो है, नीरनो है ना। तो ए सारा काम जब अपने हरेक आदमी ना हो और खास तौर से आदमिया ने, अब कई जगह देखा के वो कहे कि भाई मन तो रोटी को बनानी है, घर की लुगाई नहीं हो तो रोटियां मैंने भूखा रह जाओ। और रोटी सब्जी ए हरेक आदमी को काम होना चाहिए, टाबरा ने भी सिखाना चाहिए, अपनी संस्कृति है, ताकि कारण का हुआ कटे इन्हें मैंने जानो पड़ जाए तो भूखो को रहो पड़े या इन्हें मैंने ताकनो कौन पड़े। आपको जो कुछ भी खिचड़ी दलियो कड्डी राय तो बनायो और खायो, तो ऐसा सगड़ा काम है जिसका सीखना चाहिए। तो महिलाओं को योगदान तो बहुत जबरदस्त है। आप मान के चला के आदमी ने दोनों काम महिला करे खेती के मायने, अब आदमी तो कह दिन के खेत में जासी काम धाम करसी और करसी, आधी बार खेत में पड़े रहसी, फिर घर आके पट देसी, नहा धो के मच्छी पकड़सी। अब लुगाई का तो बहुत सारा काम है, बाद दूध भी काटसी, तातो ठंडो करनो, जमानो करनो, रोटी बनानी, टावरा ने खुआ प्या की सुहाना और करना, गा बोलो तो धोनो करनो, सगड़ो काम करना पड़े। अब आ सोच लो छुटमुटिया काम है जगह कितना दूर
1: भाई, दिन क्यों लेके आथन के तनी महिला ही जिकी लागी रहे। और आप देखा के भाई खेत के महीने खेत में जिको काम हो तो ही काम है जिको घर के माइन भी के टाबरा ने स्कूल भेजना, बंग नुवाई दुआई करनी, बंक है जिको टिपन तैयार करके देना, फिर है जिको घर में कोई भी पशु ही तो वह सगड़ा पशुआ को है जिको बंट

0: कौन, बांग तारे कौन, सारी जी की व्यवस्था है पानी की, वह है फिर खेत में भी जाके काम करे।
1: बिल्कुल।
0: तो महिला को जो को काम है, जो को खेती और खेती संबंधित कोई भी काम, जो को चाहे भाई दूध को हो है, चाहे और कोई काम हो है, अंके महीने सेना ज्यादा है जो को महिला को योगदान हो।
1: हाँ हाँ, भाई काम दाम ज्यादा है तो इन खातर जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी है। वह किसानी के मायने पशुपालन में आम बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने का कारण वही है कि आदमी तो मान लो गांव तर चले गए, तीन दिन को नहीं आयो, लेकिन पीछे हूँ घर को काम, खेतों काम, पशुओं काम, सगड़ो महिला ने संभालना पड़ो। और महिला जब एक दो दिन कभी पीर प्यार जानो पड़ जाएगा, जरूरी जरूरी कि नहीं रिश्तेदारी में जानो पड़ जाए तो लेना देना पड़ जाए आदमी का है। अब जे चाह बनावे ने तो भी कदे तो जरियो भूल गयो, कदे वो दूध भूल गयो, कदे वो चीनी भूल गयो है, कदे क्यों भूल गयो, वो रहा न जाए है। और महिला का हरेक चीज याद रहे कि कौन सी चीज कटे पड़ी है, कौन सी चीज कटे पड़ी है, है मसालो कटे है, आटो कटे है, सब कुछ बागे ध्यान में रहे। तो इन योगदान ने बुलाया कौन जा सके। खास तौर से मैं तो आय कहना चाहूँ कि अब वर्तमान की जो खेती है वह महिलाओं का पानी है, वर्तमान का जो पशुपालन है वो महिलाओं का कारण है। छोड़ के व्यवसायिक ने भाई जहाँ बड़ी डेयरियाँ वगैरह हैं और हैं तो बंक में भी महिलाएं जिनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी अपना निभावें। तो देखो योगदान ने तो नकारे कौन जा सके, बहुत ज़्यादा योगदान है। और अब आप एक लोक भजन इनको सुनसिया चिम्मे खाको लोकगीत।

0: पानी अठा की मांगो जदी पायो नहीं ओ उंडो पानी अठा की मांगो जदी पायो नहीं गुडड़ो पड़ गयो गाठ मारो जी नी ठुकरे जेठमा
1: फिरो देश परदेश

0: तो चिमे खां और पार्टी री आवाज में गायडो अभी यो लोकगीत सुनियो। अब अरविंद भाया आपा बात री करशा के पशुधन तो सगड़ा किसान भाई रखे, पर आपा ने कहे के छोटी छोटी लापरवाही है बाकी वजह से पशुधन में भी तो लाभ होना चाहिए, भी तो वह को नहीं। कारण की है कि कोई पशु तो चार मना छोड़ के टल जा और कई मने दो मना में लातरी सरका दे, और खास तौर से अपनी देसी गाया तो वे किए के बन पालने को इन चक्करों ही कम हो गयो के बम दूध उत्पादन कम है। भाई एक तो बात री आ है कि जाड़ में दूध हो करे कि जिसो गालशा ने विशो देसी। अब कई बार की हुए कि पशु के आंतरिक बीमारियां बहुत हो जाए, आपन बेरो कौन पड़े। अब पशु के पेट में कीड़ा हो सके तो भी के लिए आपने साल में दो बार डॉक्टरों बातचीत करके और भी पशु ने कीड़ा मारने की दवाई जरूर देनी चाहिए। फिर दूसरी बात आ है कि पशु के बाहर का जगह परजीवी हैं, चींचड़ी जैया, और अब आपने एक जैयो खड़े लड़ जाए दो दिन खाद चाले, अब पशु के तो हजारों लाखों जैया हैं जगह चिमट्या रहे और पशु के हाथ भी को नहीं हो। अब जट तक पशु की जीभ पूछे है, जट तक खुर पूछे हैं, बढ़ता नहीं तो वो खाज खूज कर ले, पर कई जगह बड़े कौन पूछे बट्ठे मेरे समस्या हो जाए, बट्ठे ही बे ज्यादा लागे। खास तौर से उस ठीक आस पास की नरम जगह है बट्ठे चींचड़ी जैया बहुत लागे, तो बाको उपाय भी अपन करना चाहिए। उपाय पशु से संबंधित अपन जो भी करान है अरविंद भाया वो डॉक्टरों पूछताछ करके ही करना चाहिए।
1: भाई आपा चाहे पशु का कोई भी तरीके को, एक तो के साल के महीने पशु विभाग वाला को और कैंप लगे और पखवाड़ो चलाऊं भाई टीकाकरण पखवाड़ो। तो एक तो अपन अपने पशुओं को टीकाकरण है जो टेम टेम करा लेनो चाहिए,
0: बिल्कुल
1: बीहू के कई रोगों के चपेट के मैंने आनो अपना पशु ईज का बच जा। और दूसरो थे बात करी के भाई पशु की जाड़ के मैं दूध है तो पशु के चित्तो चोखो आपा भाई ने ख्वासिया प्यासिया चोखो राख्या बीतो ही जी सो रहा पशु है जो दूध दही घी ए अपन ज्यादा देसी। और अपा अगर जे भी पशु की ख्याली ढंगू नहीं रखांगा तो वो भी है जो के थोड़ा दिन के मैंने लात मारनी चालू कर दे,
0: बिल्कुल
1: भाई बिको तो इशारो वो ही है बोल की तो वो कह कौन से कह के भाई मन आ चीज गालो मन आ चीज गालो। और अपा देखा के पशु ब्यावे ब्याते के सगी पशु ने और आजकल लिख की दे दी डॉक्टर साहब के कैल्शियम दियो, कैल्शियम अपन जद ही देनो पड़े जद आपा अपने पशु धन ने डंको मिश्रित जो पोसा रहे ने वो नहीं दिया, टेमू टेम बिंगो ख्यात रखा तो बिंगे कैल्शियम की कमी हो वही को नहीं,
0: बिल्कुल।
1: और आपा के बाजार हर चीज के मायने आवी होगी बुरी तरह आवी हो, आपा देखा के बाजारों आपा खड़ ले जावा भी खड़ के मायने क्यों को नहीं हुआ खड़ी है
0: खड़ी है।
1: और आपा अपने घरा और खेत के मायने जो को नाज बावा भी की नाज की एक तो आपा ग्रेडिंग कर लिया भी चोखो नाज हो है जो एक नहीं छांट लिया और कठे कोई दाणु है जो को फुटेड़ो हुए और हुए कोई कालो दाणु हुए वो बिशु नाज नाक के किरकिर बिन सगड़ा नज ने सगे रला की मिश्रित और बिको बंटो अगर जे आपा अपने पशु धन ने दिया तो देखो के वो पशु है जो को निर्वाड़ो ही रसी और बिंगा दूध दही है जो को निर्वाड़ो सी
0: नाज की दौड़ होगी नहीं।
1: और भाई आपा देखा के अपना बडका जका के गुआर रान रान की है जो को पशुन दिया कर तो बहुत जो आज भी जका किसान बहन भाई और गुआर

0: की आपके पशुआन दीन है।
1: हाँ।
0: बंग देखो चामड़ी है जो की दूर ही चिलके।
1: हाँ।
0: तो वो पशु है जो को शारीरिक रूप में भी हष्ट पुष्ट रहसी तो बात चीज है जो की आपने देखनी चाहिए। और भी के सगे सगे देखो के मिश्रित जो को है ने वो कोई भी चीज हो चाहे चारो हो चाहे नाज हो वो आपा रलवा अगर जे आपने पशु दिया एक ही एक चीज हो देखो के आपा अगर जे डली कोई मीठी चीज खावा तो भी मीठी उब जावा। बाई चीज है जो की पशु के पशु ने एक एक चीज अगर आपा खाने दिया बिन फुरवा देंगा वो आराम रंजकी है जो को चोखो पानी पी कर चोखियो है जो को जीसरो रेगो और चोखो है जो को जीसरो जद पशु रेगो तो वो देखो के दूध दही सो क्यों है जो को चोखा ही चोखा देगो
1: भाई बढ़िया दूध उत्पादन उसी भी को।
0: तो आपा आपने पशु धन के खुद एज को ख्यात जीती ज्यादा रख सका बीती आपा ने एज को रखनी चाहे बिंगो एज को टेमू टेम एज को भाई गर्मी के महीने दिन में एक बार भी नुआ दिया दिन में एज को तीन चार बार बिन पानी पिया दिया चौकी हवादार जगह रखा
1: बिल्कुल।
0: और थेज की परजीवियां की बात करी चौको आपने ठाण के महीने और छानेड़ो हुए और चौकी माटी हो है। तो देखो के बटे परजीवी इंज का कम पन्न पड़े की आसार रहे
1: बिल्कुल।
0: और आपा अगर जे आपने पशु ने एज को छह महीनावी को नुआयो तो देखो बिना परजीवी तो लागेगा
1: लागे लगा सही बात।
0: तो वह छोटी छोटी जी चीजा ही ने वह आपा ने एज को ध्यान में रखनी चाहिए। और पशु एज को भी बोल की तो कोई चीज खातर कह को नहीं। और दूसरो आजकल के पशुआन घरा ही रखे लग गया खेत का महीना है जो को बहुत कम ले जानो पसंद करे लोग बाग इंज का अपन अपने पशु ने चाहे घरा हो और चाहे खेत का महीने
1: घुमानो
0: घुमानो चाहे पशु रहो वो जुड़वा हो जागो
1: भाई आदमी भी है ना जगह दिन के सुजे उठ के थोड़ा बहुत इन महीने घूम के आवे। अब अपने घर दिनोड़ी इंज की एक खुंटा बांध के दूसरे बांध दिया बीपरू बी पेरेड बांध दिया तो बा जोर मार के 50 पावड़ा चल है। अब्बा के करेगा खुंटे के चक्कर काट कूट के बटे बैठ जा बटे गोबर बटे पेशाब वगैरह कर ले तो पशु के घूमने पशु को शरीर निरोग हो है बिनकी भूख बढ़े बिन तिस लागे तो शरीर जब मांग सी ने बा शरीर के मायने पूर्ति ज्यादा कर सी।
0: और भी के सग सग आप जो को बांटो दिया भाई सर्दी का महीने बिन गर्म तासीर को गर्मी का महीने बिन ठंडी तासीर की जी की चीज है जी आप ध्यान तो ब्यू के पशु को जी सोरो रसी
1: बिल्कुल।
0: और चोखो दूध दही है जो को बड़े को भाई और पशु को अगर जी आप ख्यात नहीं रखांगा तो पशु आपनो ख्यात कौन रखेगा
1: भाई। एक तो आ नहीं के भाई बिन जन्मिना को नाज थुरैना का नाज में भी गर्मी हो तो ध्यान और रखना चीज है के ज्यादा कोशिश आ करी जा के भाई रोज की एक सार जी चीज नहीं जा। अब आजकल के एक डर्रो चाल गयो के भाई खड़ बेदी बाई दे दी खड़ बेदी बाई दे दी दिन के आथन के पूरे पशु के ब्यांत में एक ही एक चीज हूं शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाए तो आ ना मानो भाई दूध बोलो होना को मतलब वो कोनी के वो दूध गुणवत्तापूर्ण है। दूध के अंदर भी बहुत सारी चीजें हुए हैं जिकी बीमा पूर्ण होनी चीजें जद ही वो दूध जद ही वो घी काम दे तो मिलावड़ो नाज खास तौर से अगर रानड़ो है तो बिकी ओड को नहीं होवे। आपा रांधा नहीं तो भी अपने जहाँ जौ को आटो बाजरी को आटो गेहूं को दलियो या चोकर हैं और इनके साथ साथ आप थोड़ी सी बिंगमा खड़ घेर दी दो दो बाबनोड़ा घेर दिया गुड़ की कांकरी घेर दी दो मुठ्ठी लून घेर दियो हैं और इनके साथ साथ मतलब सगड़ी चीज ने जी आथन के भेज दी सुबह दे दी हैं ताजा पानी के मां मिला के हैं और इनके साथ साथ कई बार पानी पियावा पशु ने और पशु के आंतरिक बाह्य परजीवी जगह लागे कीड़ा वगैरह तो बंक को ध्यान रखा आप नहीं लागे पशु के। और बिंक के साथ साथ आप सुखो चारो गाला बिंक में हरियोपण आना जरूरी है भाई छानी गाला तूड़ी गाला पराली गाला बिंक के साथ साथ जे आप हरियो कुछ मिला दें अब कई जगह

कुआ वगैरह है बट्ठे तो किए गए एरोबाइड हो तो वो मशीन काट के थोड़ा बहुत माँ मिला दी सूखे के मायने। अब आपने के ब्राह्मी क्षेत्र का मायने वो तो लादे को नहीं, वो नहीं लादे तो आपने व्यवस्था करेड़ी है कि जहाँ लूंग है पालो है और मूंगफड़ी को चारो है तो वो हरियोपण हो भी कमा तो बी को थोड़ा सो माँ मिला देने तो वो हरे को भी काम करे स्लेज बनेडो हो भी को तो वो हरे को भी काम करे वो भी गुणवत्तापूर्ण हो बी के साथ साथ पशु ने हिसाब हिसाब कोई भोजन देना उचित रहे। यहाँ को नहीं के बिन ताहड़ा भर भर के नाज ठुरान बी को ज्यादा दूध निकले हो दूध भी तरीकों को नहीं है। देखो दूध कई चीजा पर हुआ है, एक तो पशु की जिकी बाकी बोले अगर नस्ल कौन सी है नस्ल पर आधारित है, दूसरी बात पशु के अंदर कोई कमी नहीं है, फिर पशु को बाछो या पाडो पाडी जो भी है ना तो वो कन रहे। देखो पशु को याव जो को है ना वो बच्चे पर ज्यादा हो है तो पशु के बच्चा को भी खास तौर से खास ध्यान रखा। और दूसरी बात आ है कि पशु के बच्चे ने अपन जितो ज्यादा चराओगा ने बितो ही वो तावड़ो बन के आओगे और पशु दूध देने वाला पशु वो भी राजी रहसी और दूध की मात्रा है भी बीम बढ़ सी। ऐसे सगले ही कारण सगला ही कारण बने पशु के दूध बढ़ाने वास्ते। तो दूध बढ़ाने के लिए आपने ऐसे छोटी छोटी बात है जी क्या कोई काम में लेना चाहिए भी शुक्र है कि दूध बढ़े खास तौर से पशु के अंदर का जो पेट के अंदर का जो कीड़ा है वे मारना बोझ क्योंकि वह आंत के अंदर क्योंकि पशु सीधो चरे तो बी के अंदर बहुत सारा कीटाणु है जगह पेट के अंदर प्रवेश कर जाए वह अंदर फलें फूलें वह भी को जो को नाज को रस बने वो आंतांग मायने चूस बो करें पशु के गड़बड़ रह बो करें तो आ तरीका को ध्यान रख ता से आपने पशुओं को हिसाब किताब देखना चाहिए और पशु जद ही आपने लिए फायदेमंद है जब वो बढ़िया तरीके से कम 300 दिन दूध दे ब्याणों लेके 300 दिन तानी दूध दी यानी दो एक महीना टल जाओ कोई बात को नहीं हो बाकी वो ही पशु फायदेमंद हुए। अब आप अरविंद भाया एक नानोराम भोपा की आवाज में गाइडिया लोक रचना और सुना।

0: अब अरविंद भैया आज को आपनों जो कार्यक्रम हो चौपाल को वो अटाई तानी सगला शू आप सीख लेवा और सगला शू करा राम
1: राम राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता।

आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में घर घर की कहानी फिल्म के इस गीत को। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आपको सुनवा रहे हैं काला पत्थर फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की और संगीत है राजेश रोशन का।

आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में कामचोर फिल्म के इस गीत को। शब्द रचना है इंदीवर की और संगीत है राजेश रोशन का।

श्रोता इसमें सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलजस्ता, आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में महान फिल्म के इस गीत को। संगीत है आर डी बर्मन का और शब्द रचना है अनजान की।

आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में आरोफ फिल्म के इस गीत को। संगीत है भूपेन हजारिका का और शब्द रचना है माया गोविंद की।

श्रोता इसमें सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता, आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में उषा खन्ना द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ और निदा फाजली द्वारा लिखा हुआ स्वीकार किया मैंने फिल्म के इस गीत को।

आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में मशाल फिल्म के इस गीत को। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं।
2: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
3: आप सुन रहे हैं इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ जॉनी मेरा नाम फिल्म के गीत को। आवाज है किशोर कुमार के साथ उषा खन्ना की।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं राम बलराम फिल्म के गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए राम बलराम फिल्म के संगीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।

0: निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch was going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से दो दिन के आंदोलन

आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है

0: से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारे संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है में दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ

विश्वामित्र धादीस के गाए इस गीत के साथ ही आज का राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 9:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी।
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
0: जी।
1: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
0: दी है।
1: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
0: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
1: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
0: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
0: जी।
1: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं, पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी

0: सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात यह कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है। ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है ये हमारे GFR के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेना चाहते तो कितने परसेंट उसमें ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना

0: पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
1: जी।
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
0: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं MSME में और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे MSMEs इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट MSMEs के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा
1: जी। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
3: मैम। मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग है जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं या नहीं चुका पाए होंगे तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें तो हमारा 2023 तक 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि MSME सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि MSMEs जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।

0: इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया है कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनको भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजेस इनमें एमएसएमई में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ, के जो मजदूर काम करते हैं इनमें एमएसएमई को और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: ये बड़े संघों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो

0: अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
1: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000

0: ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-180-6763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
2: हेलो
1: जी, हाँ, अपना सवाल पूछे।
2: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
2: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
2: एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी,
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं। तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये 2 पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकता है।
1: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को ₹15,000 का टूलकिट प्राप्त हो चुका है।

0: 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
1: जी, तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: नमस्कार,
3: हम आकाशवाणी
4: जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल जगत।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फुटबॉल खिलाड़ी मयंक खंडेलवाल से शिव कुमार शर्मा की गई बातचीत। ये आकाशवाणी केंद्र अलवर का अंशदान है।
1: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस खेल की जो जुनून, जोश और टीम भावना का प्रतीक है, लाखों दिलों की धड़कन है, जहाँ हर गोल के साथ उम्मीदें उड़ान भरती है। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। आज हमारे साथ मौजूद एक ऐसे प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेल, मेहनत और लगन से अपनी खास पहचान बनाई। हमारे साथ हैं मयंक खंडेलवाल, जो संतोष ट्रॉफी के लिए खेल चुके हैं। मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए सर।
1: तो पहला सवाल तो हमारा यही है कि आपने फुटबॉल खेल की शुरुआत कैसे की?
2: सर, ये बात है, जब मैं पहली बार मैंने स्कूल चेंज करके मैं एक नए स्कूल में गया था, वहाँ पे जो मेरे कोच हैं, जो आज तक मेरे कोच वही रहे हैं, उन्होंने गेम्स पीरियड में मुझे पहली बार फुटबॉल की कुछ ड्रिल्स सिखाई, और वो ड्रिल्स करके मुझे जो इंटरेस्ट उस गेम में आया उस दिन, वो आज तक कॉन्टिन्यूस आ रहा है। उसके बाद मैंने उनसे बात करी कि सर और आगे खेलना है तो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाएंगे स्कूल की, तो उसके लिए आप ट्रायल दीजिए उसमें। मैंने वो ट्रायल दिया, मैं उसमें सेलेक्ट भी हुआ, और सेलेक्ट होने के बाद सर ने कॉन्टिन्यूस लगातार, मतलब 4-5 महीने हम लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई, और उसके बाद फिर हमें डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट खेलने लेकर गए। वो पहली बार था जब मैंने कोई एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेला था। सर ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी, बट स्टिल उसके बाद भी हम वो मैच, पहला मैच हम हार गए थे।
1: जी, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कहाँ हुआ था?
2: ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट गांव में हुआ था, एक खेडली करके गांव है, वहां पे वो पूरा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा रखा था, और वहां पे अलवर शहर के और अलवर शहर के स्कूलों के नाना करते हुए भी 10 से 20 टीम्स वहां पर गई थी। उन सब ने वहां पे एक दूसरे के अगेंस्ट खेल के, और वो पूरा टूर्नामेंट था, वो 3 दिन तक चला था।
1: तो पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब आप खेले,
2: जी,
1: तो क्या एहसास थे आपके, कैसा लगा आपको?
2: वो एहसास एक ऐसा था, वो आज तक मेरे जहन में बसा हुआ है कि मैं वो भूल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज जो थी, जो फुटबॉल ने उस दिन मुझे दिखाया कि यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है, वो आज तक मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और उसी के चलते मैं आज तक खेल रहा हूँ। वो एहसास इतना अच्छा था कि वहां जाने के बाद और कुछ, दुनिया सब खत्म हो जाती है, सिर्फ वही है, वो बॉल होती है उस वक्त, और आपके साथ के जो लोग होते हैं जिनके साथ आप खेल रहे हैं, बस उनके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखाई देता है।
1: जी, अच्छा, जब आप खेल की तरफ उन्मुख होते हैं या खेल की तरफ ध्यान देने लगते हैं,
2: जी,
1: तो जो घर परिवार के लोग हैं वो भी सोचने लगते हैं कि ये खेल पर ज्यादा ध्यान दे रहा है या पढ़ाई कम कर रहा है, तो आपके परिवार में क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने खेलों के प्रति अपनी रुचि बताई?
2: जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम तौर पे घरों में यही होता है कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, और खेल ठीक है, अपनी जगह है, बट पढ़ाई करियर के लिए जरूरी है। बट मेरे घर पे ऐसा था, मेरे पिताजी को हमेशा से था कि मैं जितना हो सकता है उतना खेलूं, वो उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। मैंने जब उनको पहली बार कहा था कि सर पापा मुझे फुटबॉल खेलना है, तो वैसे थे कि ठीक है, अगर तुझे इसमें करियर बनाना है तो फिर इसी तरह इसमें प्रैक्टिस करियो कि तू बहुत आगे जाए। उनको मेरी पढ़ाई से सच कोई परेशानी नहीं थी कि मैं थोड़ी बहुत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वैसे थे कि बस पढ़ाई भी जरूरी है, बट अगर तुझे खेलना है तो तू खेल की तरफ पूरा पूरा दिन अपना वहीं लगा।
1: अच्छा, आप खेलों के अलावा पढ़ाई को कितना वक्त दे पाते हैं?
2: पढ़ाई को उस समय के स्कूल के टाइम पे तो बहुत कम टाइम दिया जाता।

0: तब तो हमारा ऐसा होता था कि जितना खेलने को मिल जाए उतना खेल सकते हैं, दिन के 8-8 घंटे हम लोग लगातार खेलते रहते थे।
1: स्कूल वालों का भी सपोर्ट रहता होगा?
0: बहुत सपोर्ट होता था स्कूल का, सर ने ही स्कूल में बात करके स्कूल से पहले हमें प्रैक्टिस कराते थे, स्कूल के बाद प्रैक्टिस कराते थे, फिर शाम को ग्राउंड पे प्रैक्टिस होती थी, एक दिन में हम 3 बार प्रैक्टिस करते थे, तो वो स्कूल का भी सपोर्ट था, सर का भी सपोर्ट था और घर वालों को था, घर वालों का सपोर्ट भी था, इसीलिए वो हम 8-8 घंटे तक प्रैक्टिस कर पाते थे।
1: हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आपने खेला तो उसके बारे में कुछ बताएं, और उसके बाद फिर अगले जो कॉम्पिटिशन था वो उसके बारे में भी हमें बताएं।
0: डिस्ट्रिक्ट लेवल जब हम लोगों ने पहली बार खेला तो हम लोग अच्छा खेले थे, बहुत अच्छा खेले थे, सर ने जो प्रैक्टिस कराई थी हम उसके हिसाब से ही खेले थे, बट फिर भी क्योंकि हम पहली बार वो उस लेवल पर खेल रहे थे तो हमें वो चीज़ वैसे नहीं खेल पाए जैसी जरूरत थी वहाँ पे। हमने उस दिन वहाँ जो हम पहला मैच हारे थे हमने उससे बहुत सारी सीख मिली, हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमें अगले मैच में जब हम अगली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल या किसी और लेवल पे खेलने जाएंगे तो हमें क्या नहीं करना है। और उस मैच के बाद सर ने भी हमें उसी तरीके से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करवाई ताकि हम अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन कर पाए और अच्छे से खेल के और जीत पाए वो मैच।
1: अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने स्टेट लेवल पे खेला और उसके बाद नेशनल लेवल पे?
0: जी,
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि स्कूल्स की टीम्स आती हैं, वो सब एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करती है, टॉप की जो 3-4 टीम्स होती हैं उनमें से बच्चों को सिलेक्शन करके उनको एक कैंप में भेजा जाता है 10-15 दिन के, वहां पर उन बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है और देखा जाता है कि कौन से बच्चे हैं, कौन से 18 से 20 बच्चे हैं जो अच्छे से मन लगा के सारा सब कुछ कर रहे हैं और जिनमें है कि वो आगे जाना चाहते हैं, उन बच्चों का वहां से चयन करके उनकी एक टीम बना के उनको स्टेट के लिए भेजा जाता है जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस तरह से राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबकी टीम बन के एक जगह आती है जहाँ पे गवर्नमेंट पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है स्टेट का, वहां पर वो सारी टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट करके और फिर वहां से जो टॉप 2 से 3 टीम्स होती हैं उनमें से फिर दोबारा से 18 बच्चे निकलेंगे, 18 से पहले उनमें 50 बच्चे निकालते हैं, उनको कैंप में भेज के फिर उनको काट के 18 बच्चे करा जाता है, फिर वो 18 बच्चे 1 महीने लगातार एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, पूरे स्टेट की टीम्स के साथ अलग अलग जगह जाके खेलते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ सेट हो पाए, फिर उन 18 प्लेयर्स की जो टीम होती है उन्हें राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए संतोष ट्रॉफी जो कि नेशनल टूर्नामेंट है सीनियर्स का उसमें भेजा जाता है।
1: संतोष ट्रॉफी के बारे में बताएं कुछ कि संतोष ट्रॉफी क्या है, किस लेवल की है और किस प्रकार से कॉम्पिटिशन होते हैं?
0: संतोष ट्रॉफी बेसिकली एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट है, इसमें क्या होता है कि 5 जोन्स डिवाइडेड है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ ईस्ट, इन 5 जोन्स में 9 से 10 टीम्स होती हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करती है और वो कम्पीट करने के बाद वहां से जो टॉप 2, 1 या 2 टीम्स होती हैं उनको फाइनल इंटर जोनल खेलने के लिए भेजा जाता है। संतोष ट्रॉफी बेसिकली जो टीम संतोष ट्रॉफी जीतती है वो इंडिया में टॉप टीम्स में काउंट होती है, बिकॉज कि अगर आप नेशनल लेवल पे जीत रहे हो तो फिर उसके बाद सिर्फ आगे इंटरनेशनल बचता है, फिर वहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे फुटबॉल में।
1: संतोष ट्रॉफी में आपकी और आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: संतोष ट्रॉफी में हमारी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बट किसी कारणवश बहुत माइनर पॉइंट्स के चलते हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, हम एक मैच हार गए थे जो कि हमें जीतना चाहिए था, उस मैच के चलते हम लोग वो टूर्नामेंट क्वालिफाई नहीं करे और हम क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गए थे।
1: फुटबॉल की हम बात करें तो इसमें जो पोजीशंस होती हैं वो काफी उनके बारे में बात की जाती है, तो पोजीशंस के बारे में बताएं कि फुटबॉल में कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं।
0: जी, मेनली फुटबॉल में एक टीम को 4 क्षेत्रों में डिवाइड करा जाता है। सबसे पहले गोलकीपर होता है जिसका काम अपने गोल को बचाना है। गोलकीपर के आगे एक डिफेंस लाइन होती है, जैसे कि एक किला होता है तो गोल जो है वो हम लोगों के लिए किला है और उसके आगे जो हमने सेनापति खड़े कर रखे हैं वो हमारी डिफेंस लाइन है, उन्हें अपने फोर्ट को बचाना है। तो डिफेंस लाइन का काम है कि पूरे अच्छे से कीपर को परेशानी ना हो और गोल को गार्ड करके रखना है।
1: उनकी एक निश्चित सीमा होती है
0: उसके आगे डिफेंस लाइन के आगे आते हैं मिडफील्ड। मिडफील्ड में क्या होता है बेसिकली कि आपको पीछे से बॉल लेके डिफेंस लाइन से बॉल लेके आपके अपने स्ट्राइकर्स जो चौथी पोजीशन है जिनका काम है कि दूसरे के गोल में घुस के गोल मार कर आना है, उनको जो बॉल सप्लाई करनी है वो मिडफील्ड का काम है। मिडफील्ड बेसिकली एक तरीके से इंटरमीडिएटर है कि वो डिफेंस से बॉल लेगा, कीपर से बॉल लेगा और आगे स्ट्राइकर को पहुंचाएगा।
1: आप किस पोजीशन पे खेलते हैं?
0: जी, मैं मिडफील्ड पे खेलता हूँ सर।
1: अच्छा, ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी आपस में चेंज भी हो जाते हैं कि जो मिडफील्ड का खिलाड़ी है वो आगे बहुत गोलकीपर भी बन सकते हैं?
0: हाँ, ये बहुत नॉर्मल है कि हर प्लेयर को इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है कि वो किसी भी पोजीशन पे खेल ले, बट ये होता है कि पोजीशन

0: डिसाइड होती है कि जो उस पोजीशन पे ज्यादा अच्छा करता है उसको वो पोजीशन दे दी जाती है, बट ओवरऑल सबका काम सेम ही है, सबको एक तरीके से बॉल को कंट्रोल ही करना है और कोई भी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये बहुत ही आम बात है फुटबॉल में कि कीपर आगे खेल रहा है और आगे वाला प्लेयर कीपर की पोजीशन पे डिफेंस लाइन पे खेल रहा है, बिकॉज उन सबकी प्रैक्टिस ही ऐसी होती है कि जहां जरूरत पड़ती है वो लोग वहां जाके फिट हो जाते हैं।
1: अलवर की हम बात करें तो फुटबॉल के खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने का कहाँ मौका मिलता है?
0: अलवर में सर वैसे तो 2-3 अच्छी जगह है जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जहाँ पर मैंने हमेशा से करी है वो है आरआर कॉलेज। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, सारे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं आपको, वहाँ पे स्पेशली एक प्रॉपर कोच मिलता है जो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे, सब कुछ सारी टीमों से आपके मैच करवाएंगे, आपको उस तरीके से उस एनवायरनमेंट में ढाल देंगे कि आप आगे जाके एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर बन पाओ।
1: अच्छा, जो मैच की प्रैक्टिस आप करते हैं तो ये रोजाना होती है या कभी कभार होती है?
0: नहीं, मैच की प्रैक्टिस हफ्ते में कहा जाए तो एक बार ही कराई जाती है, बट उस एक बार उस मैच में खेलने के लिए जो आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं वो पूरे हफ्ते वहाँ पे कराई जाती है।
1: हमारे बहुत से युवा साथी इस समय हमारी बात को सुन रहे होंगे और वो चाहते हैं वो भी फुटबॉल को खेलना, फुटबॉल में उनका जो इंटरेस्ट होगा तो वो भी अपना भाग्य आजमाना चाहते होंगे, तो एक फुटबॉल के खिलाड़ी में किस तरह की स्किल्स होना बहुत जरूरी है, आपको क्या लगता है, क्या मानते हैं आप?
0: जी, सबसे पहले तो सर माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा हर मोमेंट हर स्टेप पे आपको अपने माइंडसेट को पुश करना पड़ेगा। और फिजिकली जो देखा जाए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फुटबॉल की वो है कि आप में एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल, एजिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम नहीं है जिसमें आप खड़े खड़े खेल सकते हैं, इसमें आपको कभी भागना भी पड़ेगा, भागते हुए सडन टर्न भी लेना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी की कंडीशनिंग जो है, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो सब अप टू द बार होनी चाहिए, ताकि आप वो सारे 90 मिनट के गेम के लिए अगर आपको कोई चीज़ करनी है 90 मिनट तक लगातार, तो आपको वो स्ट्रेंथ भी चाहिए वो सब करने के लिए।
1: अच्छा, फुटबॉल का खेल ऐसा है जिसमें कि सभी खिलाड़ी सक्रिय रहते हैं, सब दौड़ते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं,
0: जी सर,
1: तो ऐसे में स्टेमिना की बहुत जरूरत होती है,
0: बहुत ज्यादा सर।
1: तो स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे ये स्टेमिना इतना आ पाता है?
0: सर दो तरीके से होता है, एक विद बॉल होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली अपन फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो विद बॉल और विदाउट बॉल होता है। विदाउट बॉल हमें सर किलोमीटर्स में रनिंग करनी पड़ती है, कभी कभी 3-3, 4-4 किलोमीटर तक हम रनिंग करते हैं, फिर उसके बाद फुटबॉल खेलते हैं, तो वो जब धीरे धीरे हम लगातार उस तरीके उस पैटर्न में खेलते रहते हैं कि पहले भाग रहे हैं फिर फुटबॉल के साथ भाग रहे हैं, और फिर उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एंड्योरेंस की ट्रेनिंग होगी, एंड्योरेंस के साथ आपकी स्ट्रेंथ की भी आ जाएगी, एजिलिटी की भी आ जाएगी, सारी मिलजुल के आपका स्टैमिना धीरे धीरे धीरे धीरे वो बिल्डअप हो जाता है।
1: फुटबॉल में अपना भविष्य क्या देखते हैं आप, क्या बनना चाहेंगे आगे, क्या आपके लक्ष्य हैं?
0: सर जब मैंने शुरू किया था तब तो मेरे को एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने का लक्ष्य था, बट बिकॉज अब वो मैंने बीच में छोड़ दिया था किसी कारणवश, तो अब मैं प्लेयर की तरीके से नहीं, अब मैं इसको कोच की तरीके से देखता हूँ। मैंने मेरे सर को हमेशा बच्चों को सिखाते हुए देखा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी सर की तरह अपने एक एकेडमी में बच्चों को सिखाऊं, अपने अंडर बच्चों को ट्रेन करूं, ताकि जिस तरीके से सर ने मुझे एक रास्ता दिया था कि मैं फुटबॉल में इतना आगे आ पाया, वैसे मैं औरों को वो रास्ता प्रोवाइड कर पाऊं कि वो भी आगे तक संतोष ट्रॉफी तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर लें, वहां तक खेलें। इसके लिए सर मैंने डी लाइसेंस कर रखा है। डी लाइसेंस बेसिकली एक स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप है जो आपको कोच बनने के लिए चाहिए होता है, जहाँ पे आप बहुत कम उम्र के बच्चों को सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें सी लाइसेंस, बी लाइसेंस, ए लाइसेंस होता है। इसके अलावा सर एक बीपीएड होता है, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, वहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेन करा जाता है कि आप स्कूल में जो पीटीआईज होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं, उनके तरीके से कि वो आप कैसे बन सकते हैं।
1: जी, अच्छा, एज ए फुटबॉलर आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि फुटबॉल कोई भी स्पोर्ट्स या फिर फुटबॉल, मेरे लिए स्पेशली फुटबॉल एक सिर्फ एक गेम नहीं रहा, जब मैं उसको खेलता रहता हूँ कॉन्टिन्यूसली तो वो मेरे एक जीवन का हिस्सा बन चुका है, जो कि अब मेरे लिए इतना अहम है कि मैं उसके बिना, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो खेलना ही खेलना है, चाहे महीने में एक बार हो चाहे दिन में एक बार हो, बट वो जरूरी हो जाता है। तो स्पोर्ट्स को सिर्फ इस तरीके से ना देखा जाए कि उससे आपको कुछ चाहिए, आप शुरू इसलिए करिए क्योंकि आपको मन है, आपका इंटरेस्ट है, वो फिर जब आप अपने इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो धीरे धीरे आप रिजल्ट अपने आप उससे आपको मिलने लग जाएगा, आपको उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा।
1: तो मयंक, आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो चाहें वो आप प्राप्त करें, वो आपको मिले। फिलहाल आप स्टूडियो में आए और आपने हमसे जो बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर आपका आपको हमें मौका देने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे फुटबॉल खिलाड़ी मयंक खंडेलवाल से शिव कुमार शर्मा की बातचीत। यह आकाशवाणी

0: केंद्र अलवर का अंशदान था। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं बॉक्सिंग कोच व प्लेयर श्याम सिंह कच्छावा से गोपाल लाखन की गई बातचीत।
1: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं बॉक्सिंग कोच और प्लेयर श्याम सिंह कच्छावा से। श्याम सिंह कच्छावा जी बॉक्सिंग के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने रेफरी और जज के दायित्व भी निभाए हैं अनेक टूर्नामेंटों में। स्टेट के चैंपियन हैं और नेशनल में भी आपने कई बार अपने खेल के दम से लोगों को हैरत में डाल दिया है। श्याम सिंह जी नमस्कार, स्वागत।
2: नमस्कार सर।
1: श्याम सिंह जी, बॉक्सिंग के बारे में जानना चाहेंगे, इस खेल में आना कैसे हुआ?
2: इस खेल में सर, मैं पहले फुटबॉल खेलता था और मेरे पड़ोस में प्रवीण जी मेरे जो फ्रेंड है वो रहते थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था नेशनल में
1: बॉक्सिंग में
2: और उनकी फोटो आई थी पेपर में।
1: अच्छा।
2: तो उससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने भी सोचा कि मुझे भी बॉक्सिंग खेलनी है और मेरे को भी एक बार पेपर में मेरी फोटो जरूर आनी चाहिए।
1: अच्छा
2: जी सर।
1: जब ये सपना आपने देखा था तब तो आप छोटे ही होंगे?
2: मैं छोटा ही था।
1: हाँ। बिल्कुल। फिर आप प्रवीण जी से मिलने गए?
2: प्रवीण जी बिल्कुल पड़ोस में ही रहते थे मेरे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप भी बॉक्सिंग ट्राई करो। हाँ। तो मैंने कहा बिल्कुल, मेरे को भी फोटो लानी है पेपर में, और मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी और फिर धीरे धीरे करते करते मैंने 5 नेशनल खेले मैंने
1: जी,
2: और 5 में मेरा मेडल लगा। फर्स्ट जो नेशनल था मेरा अंबाला कैंट में, उसमें मेरा सिल्वर लगा था। उसके बाद मेरा सब जूनियर के अंदर ही मेरा गोल्ड लगा। फिर मैं जूनियर कैटेगरी में आया, जूनियर में मैंने दो चैंपियनशिप खेली और दोनों में मैंने गोल्ड मारे। फिर उसके बाद में मैं सीनियर में एंट्री करी, मैंने सीनियर के अंदर मेरा सिल्वर मेडल लगा और उसके बाद से फिर मैं बॉक्सिंग ट्रेनिंग देने लग गया।
1: स्टार्ट कब किया था
2: आपने? स्टार्ट मैंने 89 में कर दिया था,
1: 89 से आपने जब खेलना शुरू किया था बॉक्सिंग और वो सपना देखा था अखबार में
2: मेरी। बिल्कुल। मेरी फिर उसके बाद इतनी फोटोएं आई कि मतलब मेरे को लगा हाँ वास्तव में बहुत जो सोचा था सपना पूरा हुआ।
1: तो ये जो फोटो छपने का सपना था कि अखबार में मेरा फोटो छप जाए, और जब पहला मैच खेलने उतरे वो मैच याद है आपको?
2: बिल्कुल, वो मैच मुझे याद है जब मैं पहली बार उतरा था फाइट के लिए। मेरे कोच साहब बाहर खड़े हुए थे और मैंने जब फाइट खेली तो मैं जब जीता वो तो कोच साहब ने रिंग पे से मुझे कंधे पे उतारा और वो मोमेंट मुझे आज तक याद है और मैं उसको बार बार याद करता रहता हूँ। मेरे दोस्तों से मिलता हूँ तो उसको शेयर करता हूँ, बड़ा खुश होते हैं सब, क्योंकि कोच साहब हमारे जो थे वो मिलिट्री से रिटायर हुए थे और सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाते थे वो, और पूरे इंडिया में उनको मानते थे क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के कोच
1: जी जी
2: और प्लेयर रह चुके।
1: श्याम सिंह जी, जब पहली बार रिंग में उतरे नेचुरली थोड़ा डर लगा होगा, फिर घर वालों ने कहा होगा कि तुम बॉक्सिंग मत चुनो यार, कुछ और गेम खेल लो?
2: घर वालों का तो था ही कि भाई लग जाएगी, चोट आ जाएगी और तुम इसको मत खेलो। जो रिलेटिव भी आते थे वो भी मना करते थे, किस गेम में डाल दिया। लेकिन एक मेरा मतलब जो सपना था उसको मेरे पिताजी बोले नहीं खेलने दो इसको, करने दो, आगे बढ़ेगा। और मेरा आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था
1: जी।
2: गुजरात पुलिस में भी मैंने 8 महीने जॉब किया, उड़न दस्ते में लगा दिया था उन्होंने मेरे को, लेकिन वो गेम से दूर हो गया था मैं। तो फिर मैंने अपने जो ऑफिसर थे उनसे मिलके मैंने कहा मेरे को गेम खेलना है तो मैं रिजाइन दूंगा। तो बोले बेटा देख लो आप। मैंने कहा नहीं, मेरे को गेम खेलना है, आपने तो गेम से दूर कर दिया। फिर वहां रिजाइन देके मैं यहाँ पे आया। फिर मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद में नेवी में भी हुआ मेरा सिलेक्शन, लेकिन मैंने गेम के वजह से वहां भी ज्वाइन नहीं किया।
1: यानी खेल को सर्वोपरि रखा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, जब आप खेलने उतरे बॉक्सिंग के रिंग में और लगातार मेडल जीतते गए
2: जी,
1: फिर घर वालों का थोड़ा रवैया बदला?
2: बिल्कुल बदला, घर वालों का रवैया बदला। मेरे जो रिलेटिव्स थे वो मेरे से मिलने आते थे जब मेरी पेपर में फोटो आती थी। मेरे पिताजी को काफी सम्मान मिला, मुझे सम्मान मिला
1: जी,
2: और आज तक मिलता जा रहा है सम्मान।
1: ये सब खेल की बदौलत?
2: ये सब खेल की बदौलत।
1: अच्छा, बॉक्सिंग का खेल काफी खतरनाक माना जाता है और ऐसा लगता है कि यूं तो हर एक खेल में चोट की संभावना रहती है लेकिन बॉक्सिंग में थोड़ी ज्यादा है, कितने चैलेंज हैं इसमें?
2: सर, इसमें लगता है सबको कि ये बहुत खतरनाक गेम है। वैसे देखा जाए तो ये गेम ओनली 40% जो पावर यूज होती है, क्योंकि ग्लव्स आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, उनका फॉर्म काफी अच्छा है। फिर हेड गार्ड वगैरह लगाया जाता है बॉक्सर जो फाइट लड़ता है, प्लस टीथ गार्ड होता है, गमशील जिसको बोलते हैं दांतों के लिए, होठ वगैरह नहीं कटते उससे। और बीच में जो रेफरी होता है, क्योंकि मैं भी रेफरी की ट्रेनिंग ली हुई है मैंने
1: जी,
2: तो हमको ये कहा जाता है कि जो बॉक्सर जो फाइट कर रहे हैं तो इंजर्ड नहीं हो, उसका पूरा पूरा ध्यान रखें। इंजर्ड होने से पहले ही काउंटिंग वगैरह दें, और अगर ऐसा लग रहा है कि अगला बॉक्सर हेवी पड़ रहा है तो उस फाइट को वहीं स्टॉप करके, और RSC रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट, मतलब रेफरी ही डिसीजन दे देगा कि ब्लू कॉर्नर जीता है या रेड कॉर्नर जीता है।
1: अच्छा, तो ये सिक्योरिटी के लिए जितने सारे सामान है इसमें खेल के।

0: इक्विपमेंट्स, जैसे आपने कहा ग्लव्स लगाए
1: जाते हैं, हेड गार्ड है, टीथ गार्ड है,
0: कौन कौन से ऐसे नाम लेना चाहेंगे जो जरूरी हैं और बहुत उसके बिना हम खेल नहीं सकते?
1: बिल्कुल, इसमें हेड गार्ड के बिना आप नहीं खेल सकते, रूल है ये। आप गमशील्ड जो टीथ गार्ड होता है उसके बिना आप नहीं खेल सकते हैं, एल गार्ड है उसके बिना नहीं खेल सकते हैं, अंदर क्रैप बैंडेज होती है आपकी ग्लव्स के अंदर, पहनने से पहले एक बैंडेज पहनी जाती है जिससे अपने रिस्ट वगैरह में कोई इंजर्ड नहीं हो। तो सेफ गेम है मेरे हिसाब से, आज तक मैं कभी इंजर्ड नहीं हुआ। और खेलने से पहले खिलाड़ी को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरा वार्म अप हो, अच्छी तरह वार्म अप हो करके फिर बाद में वो अपनी प्रैक्टिस करे, किटबैक करे, पैड करे या टचिंग करे, फाइट करे, क्योंकि उससे पहले अगर बिना वार्म अप हुए अगर हम उतर जाते हैं तो इंजर्ड होने के चांसेस पूरे पूरे चांसेस रहते हैं।
0: प्रैक्टिस कितनी मांगता है बॉक्सिंग? प्रैक्टिस हर एक गेम चाहता है कि भाई प्रैक्टिस करके आए, अभ्यास करें, उसके बाद में हम फाइनल मैच खेलने होते हैं।
1: जी जी,
0: तो प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है?
1: प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करता था 3 घंटे मॉर्निंग में सुबह करता था प्रैक्टिस और 3 घंटे इवनिंग में करता था, और इसमें डाइट का बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट रहता है, रोल रहता है, तो डाइट का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है, मेन चीज वो भी है गेम्स के साथ।
0: जो इस खिलाड़ी बॉक्सिंग में आना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सी कैटेगरी है, किस तरह से आ सकता है? हाँ, वेट कैटेगरी होती है या एज?
1: इसमें वेट कैटेगरीज भी होती है और एज कैटेगरीज भी होती है, इसको अलग अलग उसमें भागों में बांटा गया है, जैसे सब जूनियर कैटेगरी होती है, फिर उसके बाद में जूनियर होती है, फिर यूथ होती है और फिर सीनियर होती है। इनमें 12 से 13 साल के जो हैं वो सब जूनियर में आते हैं और 13-14 के जो हैं वो अपने उसमें आते हैं जूनियर में, और 16 से 17 आते हैं आपके यूथ में, और फिर जो 18 से ऊपर के हैं वो सीनियर में आते हैं।
0: यानी 12 साल की आयु का बच्चा इस गेम में आने के लिए तैयार हो सकता?
1: बिल्कुल
0: है,
1: हो सकता
0: और
1: है।
0: वहां से शुरुआत,
1: वहां से शुरुआत हो।
0: कहीं ऐसा लगता है कि यार मैं गलत फंस गया इस गेम में, चेंज कर लूं बीच में, कभी ऐसा?
1: नहीं नहीं, वो अगर अच्छा बॉक्सर है और पूरा सपोर्ट मिल रहा है उसको और वो फाइट जीत रहा है, हार जीत तो हर गेम में लगी रहती है, तो हार से तो यही सीख मिलती है कि हम और अच्छी प्रैक्टिस करें, कुछ कमी रह गई हमें तो हमको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो वो तो एक मोटिवेशन मिलता है उससे अपन को हारने से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगा मेरे को कि मैंने गलत गेम चुन लिया या मैं गलत गेम में आ गया हूं। और मैंने आज तक मतलब मैं बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ हूं और मैं अंतिम श्वास तक बॉक्सिंग से जुड़ा रहूंगा,
0: आजीवन रहेंगे,
1: आजीवन रहूंगा।
0: श्याम सिंह जी, अभी आपने कहा था कि आप रेफरी के दायित्व भी निभाते हैं
1: जी,
0: और जजमेंट भी करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो एक प्लेयर ही रेफरी बन सकता है या कुछ और जो दूसरे खिलाड़ी?
1: एक प्लेयर ही रेफरी बन सकता है, अच्छा रेफरी और अच्छा जज बन सकता है, क्योंकि उसको सारे नियम कानून कायदे सब पता रहते हैं, क्योंकि वो खेलता भी है। उसके बाद में आपकी रेफरी और जज की एक ट्रेनिंग होती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको एसोसिएशन से, उसके बाद ही आप मतलब रिंग में रेफरी और जज बन सकते हैं।
0: खिलाड़ी के तौर पे अलग चैलेंज होता है, हमको वहाँ जीतने की रहती है कि मैं जीतूं, और रेफरी के तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ अलग चैलेंज है। तो किस तरह से आप अपने दायित्व को निभाते हैं जब आप रेफरी होते हैं?
1: रेफरी होते हैं
0: क्योंकि खेल खिलाड़ी भी आपके भीतर है और फिर रेफरी का रोल निभाना है।
1: उसमें ये होता है कि जब मैं रेफरी बनता हूँ तो हमको ये बताया जाता है कि एक तो कोई फाउल नहीं खेले, अगर फाउल खेल रहा है तो उसी टाइम उसको स्टॉप करके वार्निंग देनी है कि आपकी फर्स्ट वार्निंग, आपने ये फाउल मारा है, ओपन हैंड मारा है या आपने हेड डाउन किया है ना, या आप उसको क्लिंचिंग कर रहे हैं, तो उनको रोक करके वार्निंग दी जाती है। थर्ड वार्निंग में फिर एक्शन लिया जाता है उस पे कि अगर आपकी बार आपने कुछ किया तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे आप।
0: कभी कभी खिलाड़ी खेलते खेलते एग्रेसिव हो जाता है और वो रेफरी पर ही पंच मार देता है, ऐसा हुआ है या होता है?
1: नहीं, ऐसा वैसे मैंने देखा है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ज्यादा होता है, अमेचर बॉक्सिंग जो है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रूल रेगुलेशन सब जानते हैं, ऐसा करने पे आप रेस्टिकेट हो सकते हैं 2-3 साल के लिए।
0: अच्छा।
1: इसलिए कभी भी बॉक्सर ऐसी गलती नहीं करते हैं।
0: जज बनने के अपने अलग चैलेंज है, जब आप बाहर रिंग के बाहर बैठते हैं, रेफरी होते हैं तब तो रिंग के
1: अंदर होते हैं,
0: और जब जज होते हैं तो रिंग के बाहर,
1: रिंग के बाहर होते हैं।
0: वहाँ के चैलेंज किस तरह के?
1: वहाँ के ऐसे होते हैं कि हमको ये बताया जाता है कि मतलब पूरा ध्यान दोनों बॉक्सरों पे रहता है, कौन कितने पंचेज मार रहा है, नकल पार्ट से बॉडी पार्ट पे कितने पंचेज लगे हैं उन्हीं को हमको पॉइंट देने, उनके अलावा जो गार्ड वगैरह होते हैं जो अपने हैंड से जो रोकते हैं उन पे अगर लगते हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाता है
0: जी।
1: और बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है ये एक तरह का, कि रेफ जज जो बनना है, कहीं भी किसी भी बॉक्सर के साथ कोई गलती नहीं हो जाए, कोई मतलब हमारी वजह से कोई उसको नुकसान नहीं हो जाए, जीती हुई फाइट कहीं हार नहीं जाए।
0: हाँ, यानी अच्छे तरीके से सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है।
1: बिल्कुल सर,
0: चौकन्नी रखनी है,
1: चौकन्नी रखनी पड़ती है, बिल्कुल एकदम।
0: श्याम सिंह जी, कई बार जो खिलाड़ी आपस में जब खेलते हैं

0: बॉक्सिंग कर रहे होते
1: जी
0: हैं तो सिर्फ फेस पर आपको पंच मारना है या कई बार दूसरी जगह भी आप मार सकते हैं बॉडी में?
1: नहीं, इसका एक टारगेट एरिया होता है अपना ऊपर हेड से लेकर के बेल्ट एरिया तक।
0: अच्छा,
1: बिल्कुल फ्रंट में, बस उसी एरिया में जो पंच है वो अलाउड रहते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पंच मार देता है बॉक्सर तो वो फाउल में आता है,
0: यानी पेट तक मार सकता।
1: हाँ, बेल्ट तक, बेल्ट के ऊपर ऊपर,
0: बेल्ट के ऊपर,
1: बेल्ट के ऊपर ऊपर,
0: तो कमर से ऊपर ऊपर, फेस,
1: हाँ, फेस हेड से लेकर के और नीचे बेल्ट के एरिया तक, बेल्ट से नीचे फाउल है और ऊपर हेड पे भी फाउल है और हेड के पीछे भी फाउल है।
0: अच्छा,
1: यस,
0: तो ये आपको काफी सोच समझ कर खेलना है, और जब आप खेल रहे होते हैं बॉक्सिंग का तो इन चीजों का ध्यान रखना ही
1: जी,
0: पड़ेगा
1: जी, हाँ।
0: आप नए बच्चों को सिखाते भी हैं, कोचिंग करते
1: जी,
0: हैं बॉक्सिंग की, किस तरह के चैलेंज? आपके कई सारे रूप हैं दरअसल, आप एक खिलाड़ी हैं, जज हैं, रेफरी हैं और भी न जाने क्या क्या है, अब आप कोच के रोल में भी हैं।
1: जी
0: तो कोचिंग करते समय आप खिलाड़ियों को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, क्या योग्यताएं देखते हैं उनमें कि ये बच्चा बॉक्सिंग में आगे जा सकता है?
1: बिल्कुल, अभी काफी अच्छा मतलब रेस्पॉन्स मिला है मेरे को बॉक्सिंग में। 5 साल के बच्चे भी मेरे पास बॉक्सिंग सीखने आ रहे हैं, तो 5 साल से ही एंट्री दे देता हूं मैं बच्चों को। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी मतलब वो रहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए और मतलब सीखे और मतलब इसको अच्छे ट्रेनिंग मिले हमको। तो काफी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, सब काफी एज के आ रहे हैं, गर्ल्स भी आ रही है मेरे पास। तो उनको शुरू से जो ट्रेनिंग दी जाती है, हम सबसे पहले उनको खड़े होने की पोजीशन बताते हैं, फिर उसके बाद में गार्ड टारगेट एरिया बताते हैं, फिर पंच मारना उनको सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे फुटवर्क पे लेके आते हैं उनको, फुटवर्क के बारे में सिखाते हैं, फिर डिफेंस सिखाते हैं, फिर अटैक सिखाते हैं, फिर उसके बाद में हम उनको रिंग का मूवमेंट सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे पैड वगैरह, किट बैग वगैरह लेके आते हैं। और इस तरह से हम हमारा शेड्यूल बनाते हैं, बच्चे का स्टेमिना धीरे धीरे धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं।
0: जी,
1: तो काफी कुछ मतलब बच्चा इससे,
0: सीखता है।
1: हाँ, सीखता है।
0: श्याम सिंह जी, हर एक गेम की एक अलग डाइट होती है, और डाइट प्लान के बिना हम शायद अच्छा ग्रो नहीं कर सकते,
1: बिल्कुल
0: अच्छी
1: नहीं,
0: परफॉर्मेंस नहीं दे सकते।
1: नहीं कर सकते।
0: बॉक्सिंग के गेम में खिलाड़ी के लिए कुछ अलग डाइट प्लान होता है या नॉर्मल डाइट से
1: नहीं,
0: काम चल
1: नॉर्मल
0: सकता
1: डाइट प्लान होता है वही, जैसे आपका एग हो गया, दूध हो गया, चने हो गए,
0: प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट?
1: प्रोटीन, हाँ, ये चीजें रहती है नॉर्मल। बाकी और बस ये ऑयली चीजें जो हैं, बेकरी वाले जो फूड्स वगैरह हैं, उसके लिए हम अलाउ नहीं करते बच्चे को,
0: अवॉइड करते
1: या
0: हैं।
1: अवॉइड करते हैं इसको।
0: जब बच्चे को लेकर आपके पास में आते हैं माता पिता,
1: जी
0: तो उनकी कुछ अलग तरह की क्वेरीज होती है,
1: जी
0: और वो चाहते होंगे कि हम आज आप श्याम सिंह जी आपको अपना बच्चा दे रहे हैं और आप
1: बिल्कुल
0: 2 साल में इसको चैंपियन बना देना,
1: बिल्कुल,
0: किस तरह के सवालात होते हैं जब, क्योंकि हर
1: हाँ
0: एक माँ बाप चाहता है कि मेरा
1: बिल्कुल
0: बच्चा जल्दी से जल्दी मेडल ले।
1: बिल्कुल, कई बच्चे ऐसे आते हैं आजकल जो आ रहे हैं मेरे पास, फैटी आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मोबाइल से खेलते रहते हैं
0: जी
1: या टीवी
0: जी
1: पे कार्टून देखते रहते हैं,
0: जी
1: बाहर निकलने वाला तो सीन है ही नहीं आजकल। तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि एक तो इसका वजन थोड़ा सा आपको कम करवाना है, और मतलब बच्चा ऐसा बन जाए कि हम इसको आगे तक खिलाना चाहते हैं, ओलंपिक खेल सकता है कि हमारा बच्चा, यहाँ तक बोलते हैं पेरेंट्स।
0: अच्छा,
1: तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि देखेंगे हम, आप बच्चे को धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और मैंने कहा ओलंपिक तक के भी चांस हैं, क्योंकि फेडरेशन से जुड़े हुए हैं हम।
0: जी,
1: तो मैंने कहा आगे तक जा सकता है बच्चा। अभी जैसे मेरे 3 बच्चे अभी साई में हैं, जोधपुर हैं, और इंटरनेशनल भी मेरा एक बच्चा खेला हुआ है, और बच्चे 2-3 बच्चे जॉब भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी। तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स है बच्चों का। और अभी एक बच्ची जाएगी नेशनल, अभी एक बच्चा स्टेट के लिए तैयारी कर रहा है। तो काफी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं।
0: अच्छा, गर्ल्स एंड बॉयज का जो सीन है स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में,
1: जी
0: वो उसमें लड़कियां ज्यादा आ रही हैं अभी या लड़की?
1: हाँ, लड़कियों का रेशियो ज्यादा है मेरे पास।
0: लड़कियों के लिए प्लस पॉइंट क्या है बॉक्सिंग सीखने में?
1: लड़कियों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो गर्ल्स को आगे भेजते हैं, वो भी बॉक्सिंग जैसे गेम में।
0: जी,
1: तो इसमें जो कंपटीशन जो होता है वो बॉयज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रहता है। तो क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनको पेरेंट्स सोचते हैं चोट आ जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा, तो हम नहीं भेजें। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमारे बच्चे आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ जाती है बच्चियां, जैसे कई पुलिस में लगी हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, जैसे आपने मैरी कॉम, लवलीना,
0: जी,
1: स्वीटी,
0: बड़े नाम है।
1: हाँ, काफी अच्छी बॉक्सर्स हैं। और इन्होंने,
0: अब आपने ये नाम लिया तो मैं आपका रोल मॉडल भी पूछ लूं, बॉक्सिंग में आपके रोल मॉडल आदर्श कौन है?
1: मेरे आदर्श मेरे कोच साहब भी हैं,
0: अच्छा,
1: मूल सिंह जी शेखावत।
0: जी,
1: उन्होंने जब मतलब बॉक्सिंग में शुरुआत करी थी, तो उनका एक ये था कि उनका एक राइट पंच अगर किसी बॉक्सर के लग जाता था, तो उनको ये इतना कॉन्फिडेंस था कि फाइट खत्म, और वो ग्लव्स खोल के साइड में चले जाते थे। उधर उसकी काउंटिंग होती रहती थी, 8 तक काउंटिंग के बाद में, 9-10 के बाद में गेम खत्म हो जाता है, वो गेम खत्म ही होता था। तो इतना कॉन्फिडेंस था। तो मेरे को, मेरे रोल मॉडल वही है कोच साहब।
0: क्या कहना चाहेंगे उन नए खिलाड़ियों के लिए जो बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, जिसको एक करियर

0: तौर पे अपनाना चाहते
1: हैं। बिल्कुल, बॉक्सिंग एक बहुत अच्छा गेम है, सेफ गेम है, और मैं आज तक इंजर्ड नहीं हुआ हूं, तो इंजर्ड की तो कोई परवाह ही नहीं करें बिल्कुल भी। मेरी वाइफ भी बॉक्सर है, मेरी डॉटर भी बॉक्सर है, तो बॉक्सिंग सेफ गेम है, सब ज्वाइन करें, और फिटनेस के लिए भी काफी अच्छा है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी काफी अच्छा गेम है, और आगे हम बढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल तक हम जा सकते हैं इसमें।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सिंह जी कछावा साहब,
1: धन्यवाद।
0: आज बॉक्सिंग के बारे में इतनी अच्छी बातें की आपने, और हमारे तमाम सुनने वालों को बताया कि वास्तव में बॉक्सिंग एक बहुत ही अच्छा गेम है और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो श्रोताओं,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गायी कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM 110.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हमसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज की ये दूसरी सभा यहीं संपन्न होती है। कल हमारी प्रथम सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।